सुप्रभात, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 27, तदनुसार 18 अगस्त वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 25 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए AI आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की

0: कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6:05 हुए हैं, समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। इस कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध ने कहा है, क्रोध में 1000 शब्द बोलने से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

यह है विविध भारती झरोका में लीजिए सुनिए आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 284 6:35 से 6:45 से सुबह व शाम संगीत सरिता। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक, कलाकार पंडित कालीनाथ मिश्र। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। आज के फनकार आज केंद्रित होगा फिल्मकार गुलजार पर, समय सुबह 9:30 से। दस बजे पिटारा में सुनिएगा सेहतनामा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से लेकर आएंगे रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का, 2:30 से सुनिएगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 से सखी सहेली। चार बजे से पिटारा में सेल्युलॉइड के सितारे में अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग आज आप सुनेंगे। शाम 5 लेकर आएंगे छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने। छह 6:35 से संध्या रंजन का वक्त होगा, 7 फौजी साथियों के लिए जयमाला।

7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे हवा महल में झलकी एक पत्र अंग्रेजी में, लेखक चंद्रशेखर पांडे, निर्देशक अनूप सेठी। रात 9 बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार आज केंद्रित होगा अभिनेत्री मनीषा कोइराला पर। दस बजे से लेकर आएंगे छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

हनुमान से श्री राम की मुद्रिका पाकर सीता को पवन पुत्र के श्री राम सेवक होने का विश्वास हो गया। हृदय में अगाध प्रीति उमड़ आई। माता सीता की ये दशा देख हनुमान उन्हें धीरज बंधाते हैं। मैं तो आपको अपने साथ अभी ही यहाँ से लिवा ले जाता, किंतु स्वामी की आज्ञा बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता।

0: अभी आपने सुनी श्री रामचरितमानस का भाग 284।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: श्री कालीनाथ मिश्रा जी, आज की इस दूसरी कड़ी में मैं रामकृष्ण दास आपका स्वागत करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार दास बाबू।
1: मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय फिल्म संगीत में बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी तबले संगति प्रदान की है
2: जी।
1: तो उस सिलसिले में आप हमें ये बताएं और प्रस्तुत भी करें कि आज आप क्या हमारे संगीत सरिता के श्रोताओं को सुनाने वाले हैं।
2: मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया दास बाबू। एक जमाना हुआ करता था कि फिल्मों में प्योर क्लासिकल, क्योंकि सारा क्लासिकल हमारा इतना बड़ा धरोहर है फारूक भाई की, सारा बेस इसी पर है हमारा। और हमारे बड़े बड़े गुरुओं ने बड़ा योगदान दिया है। हमारे चाचा पंडित सामता प्रसाद जी, गुदई महाराज जी जिनको कहते हैं, रविशंकर जी, अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, रईस खान साहब। तो अभी मैं तबले की चर्चा करता हूँ कि मैंने सोचा कि दूसरी कड़ी में क्यों न हम रूपक ताल पे, क्योंकि बहुत से पिक्चर हैं जिसमें गुदई महाराज जी ने बहुत योगदान दिया है। निजामुद्दीन खान साहब का एक अंदाज था और गुदई महाराज जी ने तो झनक झनक पायल बाजे, शोले, ऐसे बहुत से पिक्चरों में। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि श्रोताओं से सात मात्रा के बारे में बात करें, और यही एक ताल ऐसा है जिसमें खाली नहीं होता है,
1: सम की जगह पे खाली बस।
2: जी हाँ, जी हाँ, है ना, क्योंकि जो सम का अंदाज है उसकी चलन ऐसी है, उसका एक चाल ऐसा है जो हम उसको कहते तिन तिन नाथक धिन धिन नाथक धिन धिन नाथक तिन तिन, तो खाली दिखाते पर अंदाज हमारा खाली का, पर वो सम है। यही एक ऐसा ताल है। और तिवरा ताल, धा दिन ता ते टे कत ग दी गी न धा,
1: ये पखावज का,
2: ये पखावज है। तो मैं आज अपने तबला वादन से रूपक और तिवरा ताल दोनों का अंदाज प्रस्तुत करता हूँ। और बनारस का नाधिन धिन्ना बड़ा प्रसिद्ध रहा, आप खुद एक बहुत लाजवाब कलाकार हैं दास बाबू, तो नाधिन धिन्ना का क्या चलन है, तो प्रस्तुत करता हूँ रूपक ताल। तो श्रोताओं, रूपक ताल सात मात्रे का होता है जिसमें एक, चार और छह पे ताली होती है। तीन विभाग होते हैं,

इसे कहते हैं छूट। छूट क्या चीज है? अपनी मन की बातें, वो वही बनता है। कभी हो सकता है वो हम सम पे आने पे, हो सकता है कि हम चूक जाएं, लेकिन छूट का अंदाज है कि एक बोलों के साथ नोक झोंक,

0: क्या खूब बजाया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये तबला बजाते वक्त बहुत बार आप लोग बायां और दायां हाथ दोनों तबले पे बजाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कब बजाते हैं?
1: ये जब मूड बन जाए।
0: नहीं कोई स्पेसिफिक बोल है जिसके लिए बजाते हैं?
1: एक एक एक जब हमको लय दिखाई देता है तो हम चांटी पे खेल सकते हैं, एक अंदाज है उसका कि चलो चांटी पे ले लें क्योंकि इतना अच्छा लहरा लहरा। देखिए एक बात बता दें, लोग कहते हैं कि हम लहरा नहीं बजाएंगे तबला वाले के साथ।
0: अच्छा
1: लहरा बजाना बड़ा मुश्किल है दास बाबू।
0: वो तो है,
1: जो बहुत ताल से मारा हुआ होगा ना,
0: लड़का पक्का भी होगा।
1: हाँ वही वही, जो बहुत ताल से भरपूर होगा वही ये बोझा संभाल पाएगा।
0: और एक बात
1: जी,
0: आपने खत्म करते वक्त कई तिहाइयां ली, तो तिहाई के बारे में थोड़ा बताइए ना, तिहाई होती क्या चीज है?
1: हाँ बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्या बात है। तिहाई एक वो शब्द है कि हम जब खाना खाने बैठते हैं
0: जी,
1: तो जरूरी नहीं कि हम खाली चावल दाल ही खाएं, कभी अचार खा लिया, कभी थोड़ा सा आम चख लिया, कभी थोड़ा सा पानी पी लिया। तबले का ये एक प्रचलित नाम है तिहाई, वो छोटी छोटी सिंपल से बोल होते हैं जिसके साथ हम नोक झोंक कर सकते हैं, जो पर हमको लय को देखते जाना है, लय हमारा प्रधान है। तो जो तिहाई है, तिहाई हम एक छोटी छोटी चीजों को बजा के हर ताल में, जरूरी की रूपक ताल में बजाएं हम, उस तिहाई से बोलों को हम खत्म करते हैं तो आनंद आता है, और जब तिहाई का धा गिरता है तो हमें भी आनंद आता है, सुनने वाले श्रोताओं का भी आनंद आता है। इसका नाम है जैसे
0: क्या बात, यानी एक ही चीज तीन बार आती है।
1: जी हाँ जी हाँ, नहीं तीन बार टुकड़ा भी होता है, तीन बार परण भी होता है,
0: पर उसकी बोल बड़ा हो जाते
1: हैं। जैसे एक झलक दिखा देता हूँ।

0: मिश्रा जी, फिल्म में मेरे ख्याल से बहुत सारे गीत होंगे जो रूपक पर आधारित
1: बहुत,
0: हैं।
1: बहुत बहुत
0: तो कोई एक गीत आप बताइए ना हमारे श्रोताओं के लिए।
1: आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, एक बड़ा सुंदर गाना है, रूपक ताल में ही है वो। फिल्म है मेरे हम सफर।

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म भाभी से। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

बड़ा भाई, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, एहसान रिजवी ने इसे लिखा। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वो था न्यू दिल्ली फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत और शंकर जयकिशन की तर्ज। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: भूले बिसरे गीत।

0: तलत महमूद, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे बारिश फिल्म से।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: चंपा कली ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। हेमंत कुमार का संगीत और राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा।
1: विकटर मरे नहीं।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: जालसाज, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। एन दत्ता का संगीत था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: यह है विविध भारती प्रोग्राम। हम है राही प्यार के लेकर आएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: फिर वही फुर्सत के रात दिन।
1: लता मंगेशकर और भूपिंदर को आप सुन रहे थे मौसम फिल्म से। गुलजार ने इस गीत को लिखा, मदन मोहन का संगीत। आज गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक गुलजार का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार गुलजार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

किशोर कुमार, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। खट्टा मीठा फिल्म का नाम था। गुलजार ने इसे लिखा राजेश रोशन की तर्ज। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप

0: लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में ये गीत परिचय फिल्म से अभी आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

0: किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में गीत देवता फिल्म से अभी आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती

0: की परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल नेपाल में भारत के राज

0: राजपूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री V.D. सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति M. पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14

0: 21 और 21 19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी टेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और आइए अब चलते हैं विविध भारती मुंबई कार्यक्रम त्रिवेणी के लिए।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं होगा। बाहर और भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं,

तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें। जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहें। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

अपनी आंखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच भी कराना चाहिए। ज्यो आंखें सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, वही आंखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर्दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से न जान सके, न पढ़ सके।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये था फिल्म का नाम। शेखर रावजियानी, सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। अन्विता दत्त ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड शूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज.

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
6: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

फिल्म टू स्टेट से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लाई का म्यूजिक।

फिल्म टू स्टेट से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, शंकर एहसान लाई का म्यूजिक।

मोहित चौहान की आवाज में ये गीत जब वी मेट फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। प्रोग्राम चित्रलोक में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
1: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
0: और ₹2399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
1: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। सोलर पैनल लग...

0: वाले, कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में टशन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से

सलाम नमस्ते यह था फिल्म का नाम। शान और गायत्री अय्यर की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जयदीप सानी ने इसे लिखा और विशाल शेखर का संगीत।

नमस्ते लंदन, ये था फिल्म का नाम। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:30 हुए हैं, थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम आज का अखबार।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस

0: सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार।
2: नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम आज का अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं, आपकी दोस्त शालिनी। और दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई, हम तो यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीते रहें। और जिंदा दिली की बात करें तो हमारे देश का नाम उसमें सबसे आगे आता है, क्योंकि जो भी कोई बाहर से आता है, विदेश से आता है भारत में भारत भ्रमण के लिए, वो हमेशा एक सुनहरी याद अपने साथ लेकर जाता है। भारत का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा एक भारत का टुकड़ा अपने दिल में लेकर जाता है, क्योंकि हमारे भारत का जो कल्चर है, हमारे भारत की संस्कृति है, भारत की विविधता जो है वो सबसे अलग है। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी तरह की वेशभूषा है, इतनी तरह के मौसम है, इतनी तरह का कल्चर है, तो हम अपने आप में अनूठे हैं। और इस अनूठी कहानी को आपकी जुबान में आप भी सुना सकते हैं। जी हाँ, भारत सरकार ने जेम्स ऑफ इंडिया ये चैलेंज आपके लिए लाया है। और आप जानते ही हैं कि अभी 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे किए हैं, और इसीलिए देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान, अपनी संस्कृति की कहानी बताने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है। और अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के इसी उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। आपको बता दें कि इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को क्रिएटिव डिजिटल मीडियम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। जी हाँ, अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, जो कि आजकल बहुत सारे लोग हैं, इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको मात्र अपना फोन उठाना है और आप जहां भी रहते हैं वहां की आपको संस्कृति, विरासत और वहां की जो लोकल, जो भी आपको लगता है कि कोई खबर ऐसी देने वाली है, कुछ भी अनूठा या अलग है आप जहां रहते हैं उस जगह के बारे में, तो उसको आप डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस अभियान के पायलट चरण में, यानी कि अभी ये शुरुआती दौर में ही है, चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। और वो इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि चंडीगढ़ UT है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इसके लिए आप रजिस्टर कैसे करें, तो ये ध्यान से सुनिएगा। माई वेव्स ऐप, जो कि हमारी ऐप है आकाशवाणी दूरदर्शन, आप यहां पर हमारे सारे कार्यक्रम भी देख सकते हैं। इस ऐप पर पहले तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, अगर आपके फोन में ये नहीं है। ऐप को डाउनलोड कर उस पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर या लॉगिन करें। मोबाइल नंबर पर आए OTP को आपने दर्ज करना है और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद प्रविष्टियां जो हैं उनकी बात कर दें, जो एंट्रीज हैं वो 1 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं और 31 अगस्त 2026 यानी कि 31 तारीख तक स्वीकार की जा रही हैं। आज 18 तारीख है, अभी भी आपके पास काफी दिन है अगर आप ये एंट्री भेजना चाहते हैं। तो अगर आपके शहर, गांव या जिले में कोई भी खास जगह, कोई भी ऐसी परंपरा, प्रतिभा या कोई भी कहानी है जिसे पूरे देश को जानना चाहिए, तो उसे कर लीजिए अपने कैमरे में कैद और जेम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जो शायद ये कार्यक्रम नहीं सुन रहा होगा या जिसे इसके बारे में नहीं पता है, उससे भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

0: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: और हमारा देश, हमारी संस्कृति हमेशा आगे ही आगे बढ़ती जाए, हमारा तिरंगा हमेशा सबसे ऊंचा रहे, यही हम सबका अरमान है।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और कार्यक्रम में अब बारी आ गई है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की।

पहले राष्ट्रीय समाचार। झारखंड में विद्यार्थियों को मिली बड़ी जीत, 12 वर्ष में हुई सभी 15 परीक्षाएं रद्द की गईं।

हवाई किराए में अनियमित बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 3 हफ्ते में लाएं नए नियम वरना रोक दें विमान संचालन।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया। 2 वर्ष बाद स्मृति ईरानी की वापसी, मनप्रीत बादल बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 78% नए चेहरे शामिल।

और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में ईरान अमेरिका युद्ध में 60 दिन में शांति की शर्तें तय करने में दोनों देश फेल। कांगो में इबोला से 3 माह में 2,325 लोगों की मौत, 20% से बढ़कर अब 46% हो चुकी है मृत्यु दर। और 210 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार। और अब बारी आ गई है आपकी एंटरटेनमेंट की, तो चलिए सुन लिया जाए ये गीत।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

आज का अखबार कार्यक्रम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है और कार्यक्रम में अब बारी आ गई है लोकल और रीजनल हेडलाइंस की। पहले खबरें ट्राई सिटी की। पंचकुला से सुखना लेक जाने वाले लोगों को

लोकल और रीजनल हेडलाइंस की। पहले खबरें ट्राई सिटी की। पंचकुला से सुखना लेक जाने वाले लोगों को 21 अगस्त से मिलेगा नया सीधा रास्ता। पंचकुला से 5 मिनट में पहुंचेंगे सुखना लेक। पंचकुला के डॉल्फिन चौक से अभी लगते हैं 20 मिनट। 4.60 करोड़ से बनी सड़क सुखना रेगुलेटरी एंड तक करेगी कनेक्टिविटी। रोजाना चंडीगढ़ आने जाने वालों को मिलेगा फायदा।

8 वर्ष बाद चंडीगढ़ नगर निगम में 276 पदों पर सीधी भर्ती, ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर होगी नियुक्ति। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का होगा मेगा विस्तार, 10 लाख वर्ग फीट बढ़ेगा परिसर।

और अब बारी कुछ क्षेत्रीय समाचारों की। पंद्रह हजार करोड़ का कर्ज लेगा गमाडा, 191.16 करोड़ रुपए देगा अरेंजर फीस। रेकी से लेकर देश में हथियार तक पहुंचा रहे शहजाद भट्टी के 44 गुर्गे पंजाब से गिरफ्तार। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण राज्य के प्लॉट धारकों को विवादों से समाधान योजना 2026 में छूट देगा। 31 दिसंबर तक नहीं किया भुगतान तो जब्त होंगे प्लॉट। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस कैडर में होगी कटौती, बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू। पद कम करने से बचेंगे 200 करोड़। और चंबा में बादल फटने से पुल बहा, 50 श्रद्धालु फंसे, हिमाचल में 88 सड़कें ठप। ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस। और चलिए फिर से चलते हैं संगीत के सफर पर।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। तो इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि आपका आज का दिन हो शुभ, आप हमेशा रहें हैप्पी हैप्पी, मैं शालिनी आपसे कार्यक्रम आज का अखबार से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को है। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में JPSC और JSSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और JPSC JSSC न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि

0: बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने ये भी बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केरला में विंझिंजम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता ना करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी चीचू को 21-14, 13-21, 21-19 हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सिल्व और मौसिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से पराजित किया। के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोनल फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेट हतात हुजार से मुकाबला करेंगे। डबल्स जोड़ी की बात की जाए तो रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुथेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सरकार ने वर्ष 2014
2: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर सफर सुरीला सा ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
4: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1GB डेटा
3: और ₹2399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
4: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
5: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड शूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र, और श्रोताओं अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम सफर सुरीला सा का। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को शालिनी का प्यार भरा नमस्कार।

0: सफर सुरीला सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से, और सफर सुरीला में फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाएं हम आपको सुनवा रहे हैं। अब बारी आ गई है एक गैर फिल्मी रचना की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी जो गीत आपने सुना वो था बाजीराव मस्तानी फिल्म का, श्रेया घोषाल और वैशाली मांडे की आवाजों में। अगला गीत नीरज श्रीधर की आवाज में।
1: वो

सफर सुरीला सा कार्यक्रम में अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से, संगीत शंकर एहसान लॉय का। ये गीत गाया था डोमिनिक सरेजो, क्लिंटन सरेजो और लॉय मेंडोसा ने, और गीत लिखा था जावेद अख्तर ने। कार्यक्रम में अब बारी है एक छोटे से अंतराल की।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सुरीले सफर में. और अगला गीत उनकी आवाज में जो सुरों से खेलते हैं. जी हाँ, सोनू निगम की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं चंदा की डोली एल्बम से ये गीत.

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: और ये जीरो फिल्म का गीत. आवाज अभय जोधपुरकर की. अजय अतुल का संगीत, गीत इरशाद कामल का.

और लीजिए अब सुनिए एजेंट विनोद फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है ये गीत और संगीत प्रीतम का है। अरिजीत सिंह, हंसिका अय्यर और जॉय बरुआ की आवाजें।

और अब बारी आ गई है इस फिल्मी गीत की, जिसे हमने लिया है दम लगा के हाइशा फिल्म से। अन्नू मलिक का संगीत, पैपॉन की आवाज और वरुण ग्रोवर का लिखा यह गीत है।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर सुरीला सा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है एक गैर फिल्मी रचना जो है सुचित्रा की आवाज में।

श्रोताओं, हम आप पहुंचे हैं सफर सुरीला सा कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और आखिरी गीत हमने लिया है जॉली LLB 2 फिल्म से, आवाजें जुबिन नौटियाल, नीति मोहन की, चिरंतन भट्ट का लिखा का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है और जुनैद वसी ने इस गीत को लिखा है। तो आइए सुनते हैं ये गीत जॉली LLB 2 से।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब आज का सफर सुरीला सा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। शालिनी को दीजिए अनुमति, नमस्कार। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
2: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए अब सुनिए सेहत संबंधी हमारा कार्यक्रम FM लाइफलाइन।
4: FM Lifeline, Lifeline, Lifeline।
5: नमस्कार, प्रोग्राम FM Lifeline में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में जानकारी डॉक्टर दीपक बंसल हमें देंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
6: FM लाइफलाइन ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: हमने जो टॉपिक चुना है वो चुना है अनीमिया और थैलेसीमिया। बच्चों में अनीमिया ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं?
6: अनीमिया यानी कि खून की कमी, और ये बच्चों में काफ़ी कॉमन चीज़ है। अगर हम ओवरऑल भारत का देखें, जो 6 महीने से और 5 महीने की उम्र के बीच के बच्चे होते हैं उसमें अनीमिया करीब 60-70% बच्चों में पाया जाता है।

0: है, यानी कि अगर 10 बच्चे हैं उसके पीछे 6 या 7 बच्चों में खून की कमी होती है, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने और 5 साल की उम्र के, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है जिससे खून की मात्रा पता चलती है वो 11 ग्राम से कम होना, उसको अनीमिया बोलते हैं 6 महीने से और 5 साल की उम्र के बीच में। तो जो अनीमिया है, खून की कमी, वो काफी कॉमन बीमारी है बच्चों में।
1: इसका मतलब ये माना जाए कि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपने खान पान की तरफ ध्यान नहीं देती हैं या संतुलित आहार नहीं लेती हैं।
0: कई कारण हैं इसके, मेनली तो जो बच्चों में खून की कमी का कारण है वो ज़्यादातर सबसे कॉमन कारण है कि 6 महीने के बाद ज़्यादा दूध पिलाना और ऊपर का सॉलिड खाना कम देना। खासकर पंजाब, हरियाणा, यूपी में दूध काफ़ी खुले में मिलता है, और वैसे भी हमें भारत में मम्मी पापा को सबको दूध ज़्यादा पिलाने की
1: आदत
0: आदत है।
1: है। हाँ जी, ये दूध माँ के दूध की बात कर रहे हैं आपकी, जो बॉटल का दूध है?
0: सो दोनों ही, तो वैसे तो माँ का दूध सबसे बेस्ट है, और पहले 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो 6 महीने के बाद दूध पर्याप्त नहीं है, तो 6 महीने के बाद सिर्फ दूध पिलाएंगे तो फिर खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, और बॉटल की दूध से तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि 6 महीने के बाद धीरे धीरे दूध कम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे को भूख लगे और फिर उसको सिंपल घर का खाना दे सकें, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, सूजी, खीर, अंडा वगैरह सब दे सकते हैं।
1: डॉक्टर, आपने कहा कि 6 महीने के बाद अनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो नज़र आती है, तो 6 महीने तक आपने कहा है कि माँ का दूध पिलाना है, तो माँ के दूध से अनीमिया की कमी तो नहीं होती है? बाकी पौष्टिक तत्व तो मिल जाते हैं।
0: माँ के दूध में आयरन कम होता है, पर वो 6 महीने तक के लिए बहुत होता है, पर 6 महीने के बाद के लिए
1: अच्छा
0: कम पड़
1: अच्छा
0: जाता
1: अच्छा
0: है।
1: 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीने के बाद अगर हम कंटिन्यू रखते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और चाहे माँ का दूध हो या बॉटल का दूध हो, इसके साथ साथ संतुलित आहार जैसे कि आपने कहा कि नहीं देते, तो फिर ये अनीमिया की प्रॉब्लम
0: हो
1: विकसित
0: जाती
1: हो
0: है।
1: जाती है।
0: ज़्यादातर हमें ये सुनने को मिलता है कि मम्मी कहती हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगती 6 महीने के बाद, उसका कारण ये है कि दूध ज़्यादा पिलाते हैं। तो थोड़ा सा माँ को अपने दिल को स्ट्रांग करके बच्चे को दूध नहीं देना, कम देना है। कभी कभी ये भी कहते हैं कि बच्चे को माँ से थोड़ी देर के लिए अलग रखो, ताकि जब वो दूध मांगे उसको थोड़ा भूखा रहने दो, ताकि ऊपर से घर में सॉलिड खाना दे सकें और वो दूध ज़्यादा ना मांगे।
1: ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि बच्चे को माँ से थोड़ा दूर रखा
0: छह महीने के बाद ये
1: जाए।
0: करना पड़ता है। मेरे
1: बड़ा
0: खुद खुद
1: बड़ा
0: भी
1: मुश्किल
0: बच्चे
1: काम
0: थे,
1: है।
0: मेरे खुद के बच्चे भी थे, तो मैंने
1: हाँ
0: देखा कि जो छह
1: अच्छा,
0: महीने के बाद का टाइम है उसमें सॉलिड खाना शुरू करना और दूध कम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि तब तक बच्चे को दूध पीने की आदत पड़ चुकी होती है और माँ को भी दूध पिलाने की आदत बहुत पड़ चुकी होती है। जब भी बच्चा रोता है तो माँ बच्चे को छाती से लगा देती है, उसे एकदम से बच्चा चुप हो जाता है, पर उससे हमारा काम खत्म नहीं होता।
1: मतलब
0: हमें,
1: उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए
0: हाँ जी,
1: आपको थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है और उसको जो बाकी चीज़ें हैं उसके साथ जोड़ना पड़ता है।
0: मैं ये फिर से कहूँगा कि माँ का दूध बेस्ट है, पर 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद भी पिलाना है, पर कम करना है और सॉलिड खाना ज़्यादा देना है,
1: और
0: खासकर
1: 6 महीनों में हम लगातार माँ का दूध जो है वो पिला सकते हैं बच्चे
0: बिल्कुल
1: को,
0: वही करना है।
1: वही करना है, और उसके बाद जो है वो संतुलित आहार होना चाहिए,
0: और
1: तो उसके
0: खासकर
1: बाद दूध की आवश्यकता नहीं होती।
0: कम होती है, मतलब कि 6 महीने के बाद 24 घंटे में 600 ml से ज़्यादा दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी।
1: जी
0: 6 महीने के बाद 600 ml से ज़्यादा, यानी कि अंदाजे से आधे लीटर से ज़्यादा दूध दही से ज़्यादा नहीं देना बच्चे को।
1: डॉक्टर, हमारे श्रोता ऑनलाइन आ चुके हैं और अब हम पहले उनका सवाल सुनते हैं, आप जवाब दीजिएगा, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे।
2: सर नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सर वरिंदर सिंह बोल रहा हूँ खन्ना से। हाँ
1: वरिंदर सिंह खन्ना से,
2: जी
1: कीजिए अपना सवाल। बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: सर नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्ते वीरेंद्र, बोलो।
2: सर
1: हाँ
2: बेटे को ना थैलेसीमिया था, बीटा ट्रेट। अभी तो बच्चा 7 साल का हो गया, पर उसका 18-20 किलो वजन है उनका, पर उसका बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा।
0: थैलेसीमिया माइनर, आपने अच्छा
2: हाँ जी
0: सवाल पूछा। पंजाब
2: हाँ जी
0: हरियाणा में 100 लोगों के पीछे 3-4 लोगों को थैलेसीमिया माइनर होता है। तो
2: ठीक है सर,
0: थैलेसीमिया माइनर से कोई भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि
2: ठीक है
0: आपको
2: सर,
0: शायद पता हो कि जैसे अमिताभ बच्चन हैं, उनको भी थैलेसीमिया माइनर है, तो
2: ठीक है सर,
0: थैलेसीमिया माइनर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हिंदुस्तान में 100 लोगों के पीछे 3 या 4 लोगों को थैलेसीमिया माइनर होता है। इसमें
2: ठीक
0: जो
2: है सर,
0: ध्यान रखना है वो ये कि जब आगे चल के बच्चे की शादी हो तो जो
2: ठीक है
0: पार्टनर
2: सर,
0: आए, हस्बैंड या वाइफ, तो उसका
2: ठीक है
0: भी
2: सर,
0: टेस्ट
2: ठीक
0: करवाना जरूरी है। और अगर
2: है,
0: हस्बैंड और
2: हाँ
0: वाइफ दोनों को थैलेसीमिया माइनर हो तो फिर
2: जी
0: बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने के 25% चांस होते हैं।
2: जी सर, सर तो, मैंने केस तो

0: यही में करवाया था। मेरे हम हस्बैंड वाइफ दोनों माइनर थे, पर मेरी बेटी को नेगेटिव आया।
1: हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि 75% चांसेस हैं कि मेजर नहीं होगा।
0: सर बेटी की सेहत तो ठीक है, पर बेटा थोड़ा कमजोर है।
1: उसके लिए आप आके किसी भी बच्चे के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, पर वो थैलेसीमिया माइनर के कारण नहीं है। थैलेसीमिया माइनर में वजन कम नहीं होता। अगर आपको कम लगता है तो आप लोकल बच्चों के डॉक्टर को या फिर पीजीआई में लाके दिखा सकते हैं।
0: ठीक है, ओके सर।
2: वरिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर बंसल, हम बात कर रहे थे बच्चों को संतुलित आहार के बारे में। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि 6 महीने तक तो माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, पिलाना भी चाहिए, और उसके बाद दूध के साथ साथ 6 महीने के बाद हमें संतुलित आहार की तरफ भी बढ़ना चाहिए, उसके अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि ये जो अनीमिया की प्रॉब्लम है, ये हमारे देश में इतनी कॉमन क्यों है? अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहाँ ये इतना सुनने को नहीं मिलता, हमारे यहाँ तो अच्छा खासा इसके बारे में बात होती।
1: सो जैसे हिंदुस्तान में मैंने बताया कि बच्चों में 60-70% बच्चों को अनीमिया होता है। अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ पर अंदाजे से 5-6%, अगर ब्रिटेन में देखें, यूके में तो सिर्फ 15%, चाइना में करीब 20%। तो ये मेनली कारण है हिंदुस्तान में खाने का। हम लोग वेजिटेरियन हैं तो वो हमारी एक पर्सनल चॉइस है, तो मेनली वेजिटेरियन खाने के कारण, और ज़्यादा दूध और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि चावल और गेहूं देने के कारण ये खून की कमी होती है। क्योंकि जो जिसमें जैसे जिस खाने में आयरन ज़्यादा होता है, जैसे कि पालक, सरसों का साग, मेथी, हर एक किस्म की दालें, छोले, चना, सोयाबीन, टोफू जो कि हम ज़्यादा नहीं खाते, मूंगफली और गुड़, प्लस अंडे, मीट और मच्छी, ये ओवरऑल अगर आप सोचो तो बच्चे कम ही खाते हैं। हमारा खाना वेजिटेरियन है और दूध ज़्यादा हम पिलाते हैं, उसके कारण खून की कमी हो जाती है। पर इसके लिए हमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है कि हम वेजिटेरियन हैं, वो तो एक पर्सनल चॉइस है। एक ही तरीका है, हर तरह का सॉलिड खाना खिलाएं, पर उससे भी काम नहीं चलता तो फिर हमें रेगुलर आयरन की दवाई बच्चों में देनी पड़ती है।
2: डॉक्टर बंसल, आपने बताया चूंकि हम वेजिटेरियन हैं इस वजह से हमें प्रॉपर आयरन नहीं मिलता और अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, क्या नॉन वेज खाने वालों में अनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती?
1: उनमें भी होती है, क्योंकि इंडिया में जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी कभी कभी ही खाते हैं, कोई ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि नॉन वेजिटेरियन डाइट बेटर है या हमें उसमें शिफ्ट कर लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेरियन डाइट बढ़िया है, उल्टा अब तो उसको ज़्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है, बट हमें इस बात माननी ज़रूरी है कि वेजिटेरियन खाने से आयरन की कमी होती है। उसको ओवरकम करने के लिए हमें बच्चों को हफ्ते में 2 दिन आयरन की दवाई देनी पड़ेगी। जैसे कि इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन कम होता है, चावल और गेहूं ज़्यादा खाते हैं, उसके कारण भी आयरन की कमी हो जाती है। पर हम डाइट तो अपनी चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमें आदत पड़ चुकी है और डाइट चेंज करना पॉसिबल भी नहीं है इतना। तो उसका एक ही इलाज है कि 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे को हफ्ते में 2 दिन रेगुलर आयरन देना ही देना है।
2: जी, तो डाइट में कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो शामिल होनी चाहिए, जो हमारी स्टेपल डाइट है उसके साथ साथ क्या 2-4 बातें वेजिटेरियन के लिए, क्योंकि नॉन वेज वालों को तो आपने बताया कि कोई समस्या उस तरह से नहीं आएगी।
1: सो आपने अच्छा सवाल पूछा। तो जैसे कई जो कॉमन चीज़ें हैं, एक तो जूस पिलाने का फायदा नहीं है। मम्मी पापा को बच्चों को जूस देने में बड़ा मज़ा आता है, उनको लगता है कि महंगी चीज़ है जूस। हाँ। तो जूस देने का तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है, पूरा फ्रूट देना चाहिए, जूस नहीं देना चाहिए। बाकी दूध में, चाय में चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट एनीवे दूध कम करिए। जैसे मैंने पहले बताया कि 6 महीने और 5-6 महीने के से बड़े बच्चे में आधे लीटर से ज़्यादा दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी।
2: 600 ml
1: से ज़्यादा नहीं देनी। और जैसे मैंने जो खाने की चीज़ें पहले बताई थी, जो हरी सब्जियाँ, मूंगफली, जैसे जो पीनट बटर है वो दे सकते हैं, सोयाबीन, चने, दालें, हर किस्म की दालें, मेथी, सरसों का साग, पालक। और मैंने ये भी देखा कि कई जो वेजिटेरियन मम्मी पापा हैं वो अंडा फिर भी दे देते हैं। तो अगर मम्मी पापा की अपनी पर्सनल चॉइस हो तो वो रोज़ का एक अंडा बच्चे को दे सकते हैं, चाहे उबाल कर चाहे ऑमलेट बनाकर। पर अगर वो नहीं देना चाहें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर उसके लिए फिर आयरन की दवाई तो रेगुलर देनी पड़ेगी। और उसको हमें दवाई नहीं समझना, एक सप्लीमेंट है कि खाने में हमारे आयरन की कमी है, तो इसलिए हम दवाई नहीं है, वो सप्लीमेंट है।
2: सप्लीमेंट के तौर पे,
1: सप्लीमेंट के तौर पे ये सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा प्रोग्राम है इसके ऊपर, जिसे अनीमिया मुक्त भारत अभियान कहते हैं, जिसमें ये सरकार का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो क्योंकि सरकार इस बात को समझती है कि बच्चों में खून की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पे 6 महीने से 5 साल के

0: बच्चे में हफ्ते में 2 दिन रेगुलर आयरन देना है।
1: मतलब जो आप खा रहे हैं वो खाइए, उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन एड ऑन के लिए,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: इससे जो डेफिशिएंसी है वो दूर होगी।
0: बिल्कुल
1: जी डॉक्टर साहब, जो अनीमिया होता है, अगर ये हो जाए और हमें पता चल जाए, इलाज तो हो ही जाएगा, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: अनीमिया खासकर जब छोटे बच्चों में होता है तो उससे दिमाग की ग्रोथ है उस पर फर्क पड़ता है। जो IQ आपने सुना होगा, जो दिमाग की ताकत है IQ, वो भी कम हो सकता
1: उसका
0: है,
1: लेवल कम होता है
0: कम हो सकता है आयरन
1: जी।
0: की कमी के कारण। जो बच्चे की ग्रोथ है, इम्यूनिटी है, वो कम होती है। बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, खासकर मिट्टी खाना छोटे बच्चों में आयरन की कमी के कारण काफ़ी देखा गया है। दौरे वगैरह पड़ सकते हैं, बच्चा सांस बंद कर सकता है, पैरों में दर्द होता है, और ओवरऑल जो एक्सरसाइज की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ओवरऑल अगर देखें तो अनीमिया के कारण कोई ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं, सिर्फ खून की कमी होती है। अगर ब्लड का टेस्ट करें तभी पता चलेगा,
1: उससे पहले पता नहीं चलेगा ना।
0: नहीं ज़्यादातर बच्चों में
1: अच्छा,
0: नहीं पता
1: वैसे
0: चलता।
1: आमतौर से घर में हम बच्चों को कैसे देख सकते हैं कि
0: हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि बच्चे को कमी है, क्योंकि 10 के पीछे 7 बच्चों में कमी होती है। क्योंकि ये कमी धीरे धीरे होती है, इसलिए कोई सिम्टम्स ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते, और मम्मी पापा जो साथ में रहते हैं उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसलिए जो सरकार का प्रोग्राम है और जो होना चाहिए, वो हर एक बच्चे को हफ्ते में 2 दिन आयरन देना ही देना है, 6 महीने से 5 साल की उम्र में, और 5 साल के बाद हफ्ते में 1 दिन रेगुलर आयरन देना है।
1: प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जो सरकार की तरफ से आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं, जो इसी वजह से दी जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: उसमें
0: बिल्कुल
1: बड़े भी शामिल होते हैं और
0: बिल्कुल
1: बच्चों को भी दी जाती हैं।
0: 18 साल तक रेगुलर आयरन की दवाई दी जाती है, 5 साल से लेकर 18 साल तक हफ्ते में 1 दिन, और 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र तक हफ्ते में 2 दिन।
1: और भी कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसे PGI उसके साथ टाई अप किया हो, लोगों को जागरूक करने के लिए या आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए?
0: सरकार भी और जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोग्राम चलाती रहती है, पैम्फलेट्स निकालती रहती है व्हाट्सएप पे, और जैसे रील्स भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की निकलती रहती हैं। पर देखो, ऐसा है कि मम्मी पापा को लगता है कि हम बच्चे को दवाई क्यों दें, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक
1: बिल्कुल
0: है।
1: ठीक है। हाँ
0: तो इसको हमें दवाई नहीं समझना, इसको हमें
1: जी
0: बीमारी नहीं समझना, इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि जो हम खाना दे रहे हैं उसमें आयरन की कमी है, और उसको पूरा करने के लिए साथ में ये सप्लीमेंट दिया जा रहा है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आयरन देने से कोई गलत प्रभाव भी हो सकता है, ज़्यादा खा गए, कम खा लिया?
0: बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम है, और खासकर जब प्रेगनेंसी में मदर्स को लगता है कि उसे खाने से कब्जी होती है या पेट में दर्द होता है, तो रिसर्च ने दिखाया है कि ज़्यादातर बच्चों में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते, और खासकर अगर हफ्ते में 2 दिन देना है तो बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो अगर छोटा मोटा जुकाम, खांसी, बुखार, नज़ला वगैरह हो या दस्त लगें, तो हमें जो ये आयरन की दवाई हमें देनी है वो रेगुलर देते रहना है, उसको बंद नहीं करना।
1: अच्छा, गर्भावस्था के दौरान आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं खाने के लिए, वो प्रॉपर लेने के बाद फिर भी बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है?
0: ये आपने अच्छा सवाल पूछा। तो प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने के बाद 4थे महीने से रेगुलर आयरन की गोलियां दी जाती हैं, कम से कम 100 दिन के लिए। और उसके बाद जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब वो दवाई कंटिन्यू करनी होती है। तो अगर मदर रेगुलर बेसिस पे आयरन खाए तो डेफिनेटली बच्चे में आयरन की कमी होने के चांसेस बहुत कम हो
1: कम
0: जाते
1: हो
0: हैं।
1: जाते हैं। तो इसका मतलब कि जब आप फैमिली वे में जाने की सोचें, तो जिस तरह से डॉक्टर आपको आयरन की टेबलेट्स खाने के लिए देते हैं, जो सलाह देते हैं, उसे सीरियसली लिया जाए
0: हाँ बिल्कुल,
1: अपने आने वाले भविष्य के लिए।
0: शुरू में
1: जी
0: तो सिर्फ फोलिक एसिड दी जाती है जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए और 3 महीने निकल जाए, उसके बाद आयरन की दवाई दी जाती है। मैंने काफ़ी बार ही देखा है कि प्रेगनेंसी में मदर्स उसको टॉलरेट नहीं करती, पर हमें ये समझना है कि अगर रोज़ नहीं खा सकते तो 1 दिन छोड़ के खा लो।
1: हाँ, उसमें आमतौर से शिकायत ये देखने को मिलती है कि पेट भारी हो जाता है, गैस हो जाती है, भारीपन महसूस होता है, ये आमतौर से यही शिकायत होती है कि आयरन की टेबलेट खाने के बाद।
0: ये इतना समाव ये बात दिमाग में लोगों के बैठ गई है, बट ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा इतना कॉमन नहीं है, और अगर होता भी है तो प्रिपरेशन चेंज कर लो, या दवाई खाने के साथ खा लो, या फिर 1 दिन छोड़ के खा लो, पर छोड़नी नहीं चाहिए।
1: बीच में अगर वो छोड़ दिया जाए, उसे प्रॉपरली सीरियसली ना लिया जाए, तो उससे क्या होगा?
0: तो फिर खून की कमी होनी शुरू हो जाएगी, या फिर मदर्स को फिर आयरन की गोली की जगह फिर टीके लगाने पड़ेंगे।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम का जो हमारा हिस्सा है वो थैलेसीमिया से भी जुड़ा हुआ है। थैलेसीमिया के बारे में बताइए, ये भी खून की ही दिक्कत होती है?
0: हाँ बिल्कुल, तो थैलेसीमिया भी एक तरह का अनीमिया है, यानी कि खून की कमी, पर ये थोड़ी बड़ी बीमारी है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पंजाब, हरियाणा में, यूपी में

0: खासकर नॉर्थ इंडिया में ये देखी जाती है, ऑल दो पूरे हिंदुस्तान में है उसका,
1: पंजाब हरियाणा, इसकी वजह क्या है?
0: क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक मतलब
1: हाँ
0: कि एक ही फैमिलीज में होती है, एक ही, तो ऑल दो पूरे हिंदुस्तान में होती है बट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। तो 100 लोगों के पीछे 3 या 4 लोगों को थैलेसीमिया माइनर होता है, तो वो पकड़ में नहीं आता जब तक हम ब्लड का टेस्ट ना करें। सिर्फ ब्लड के टेस्ट से पता चलता है, उस टेस्ट को
1: अच्छा
0: HPLC कहते हैं,
1: जी,
0: तो वो स्पेशल टेस्ट है पर वो बड़ा इजीली अवेलेबल है, तो अगर वो टेस्ट करवाएंगे तभी पता चलेगा। तो आजकल तो ये ज़रूरी है कि जैसी मदर प्रेग्नेंट हो तो मदर का ब्लड का टेस्ट हो और देखा जाए कि मदर को प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया माइनर की बीमारी है या नहीं, और अगर आती है तो इमिजिएटली फिर फादर का टेस्ट किया जाता है, और अगर फादर और मदर दोनों को है थैलेसीमिया माइनर तो फिर बच्चे में थैलेसीमिया मेजर, जो कि बड़ी बीमारी है, होने के 25% चांस होते हैं। अगर मदर फादर दोनों को थैलेसीमिया है तो फिर जो बच्चा पेट में है उसमें नीचे मतलब टेस्ट लिया जाता है, बच्चा जो पेट में होता है उसका टेस्ट लिया जाता है, उससे ये पता चल जाता है कि बच्चा जो पेट में है उसको थैलेसीमिया है या नहीं। और अगर जो फीटस है, जो बच्चा पेट में है, अगर उसको बड़ी बीमारी हो तो हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं चाहे तो वह एबॉर्शन करवा सकते हैं।
1: जी
0: जेनेटिक बीमारी है,
1: क्या रेड सेल नहीं बनते हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, मतलब
1: अच्छा
0: ठीक से नहीं बनते हैं, जल्दी टूट जाते हैं।
1: अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या है? मान लीजिए किसी को पता चल गया कि उनके बच्चे को ये थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए PGI में ट्रीटमेंट कैसे होता है?
0: ज़्यादातर ये बीमारी 6 महीने के बाद पता चलती है, और फिर उसका मोटा मोटा एक ही इलाज है कि हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है ज़िंदगी भर के लिए, तो मुश्किल
1: हर
0: इलाज है।
1: महीने?
0: हाँ जी, हाँ जी, तो
1: तो
0: मुश्किल।
1: बेटर यही है कि उससे पहले आप पता लगा लिया जाए
0: बिल्कुल, तो प्रेगनेंसी में ज़रूर थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लेना चाहिए
1: हर एक को।
0: हर एक को। जो हमारी ये ब्रॉडकास्ट है, अगर मैं ये बोलूं कि इससे अगर 2 मैसेज चले जाएं कि 6 महीने के बच्चे में आयरन की दवाई रेगुलर देना ज़रूरी, दूध कम करना ज़रूरी और सॉलिड खाना ज़रूरी, नंबर 1 पॉइंट, एंड नंबर 2, प्रेगनेंसी के शुरू में ही मदर का थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना अनिवार्य। अगर मदर पॉजिटिव
1: हाँ
0: आए तो फिर फादर का भी करवाना जरूरी हो जाता है। अगर फादर नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना, अगर मम्मी पापा दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर जो बच्चा पेट में है उसका टेस्ट किया जाता है।
1: तो आपको ऐसे मामले में कन्विंस भी करना होता होगा पेरेंट्स को, बड़ा मुश्किल काम होता होगा, समझाना
0: नहीं,
1: होता होगा।
0: आजकल मैंने देखा है ओवरऑल एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अगर मदर को ऑफर किया जाए कि ये टेस्ट करवाओ तो वो करवा लेते हैं, तो ऐसे कोई मना तो नहीं करता।
1: जी
0: प्रॉब्लम ये होती
1: आजकल
0: है,
1: जागरूकता काफी हो गई है।
0: बिल्कुल, हमने ये देखा है कि अब जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो ज़्यादातर छोटे शहरों से ज़्यादा आ रहे हैं, बड़े शहरों से कम आते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में प्रेगनेंसी में पहले 3 महीनों में वो थैलेसीमिया का टेस्ट ज़्यादातर करवा लेते हैं।
1: जी तो माइनर और मेजर, मेजर कब हो जाता है?
0: सो मेजर, जब मम्मी
1: उसके लिए क्या
0: पापा,
1: कंडीशंस होती हैं?
0: सो मेजर बड़ी बीमारी है, उसमें खून बिल्कुल ही कम बनता है और फिर उसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हर महीने खून चढ़वाना पड़ता है। मेजर तो प्रॉपर थैलेसीमिया की बीमारी है, माइनर तो सिर्फ खून में ब्लड टेस्ट करने से ही पता चलता है और माइनर से वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
1: किसी के परिवार में ये पता चल गया कि थैलेसीमिक बच्चा है, तो उसका ख्याल किस तरह से रखा जाए? जो ट्रीटमेंट है वो तो करवाना ही है, हर महीने आपने बताया कि खून चढ़वाना है, इसके साथ साथ घर में उस बच्चे की कैसे केयर की जाए, उसका कैसे ख्याल रखा जाए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं उस परिवार के लिए?
0: सो थैलेसीमिया मेजर जो बड़ी बीमारी है, मोटा मोटा इलाज है रेगुलर ब्लड चढ़ाना। तो जो ब्लड होता है उसके अंदर लोहा होता है, लोहा शरीर से निकलता नहीं है, तो उसको कम करने के लिए, लोहे को कम करने के लिए साथ में दवाई दी जाती है। तो रेगुलर ब्लड चढ़ाना और रेगुलर आयरन कम करने की दवाई देना, और इसका पक्का इलाज भी है, कई सालों से है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी, अगर मैच अच्छा मिल जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले 1-2 महीने में थैलेसीमिया का टेस्ट मम्मी का करवाना अनिवार्य है।
1: जो थैलेसीमिक बच्चे होते हैं उनकी अमूमन उम्र पर भी फर्क पड़ता है?
0: अगर ढंग से इलाज हो, यानी कि हम हीमोग्लोबिन को 9, 9.5, 10 से कम ना होने दें कभी भी, और रेगुलर आयरन कम करने की दवाई दें, और जो फेरेटिन है उसको 1000 से कम रखें, तो बिल्कुल बच्चा ठीक चलता है। पर उसको रेगुलर खून की कमी ना होना, रेगुलर आयरन की दवाई देना, ये सब चीज़ें मुश्किल हैं, बट अगर रेगुलर दी जाएँ तो बिल्कुल बच्चा ठीक चलता है। और सबसे बड़ी अब चीज़, अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी इजीली अवेलेबल है, तो अगर पक्का इलाज यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लें तो बढ़िया है।
1: जब आपके पास कोई आता है उसे तो मालूम नहीं है कि अनीमिया है या थैलेसीमिया है, तो कई बार लोग इसका फर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों ही खून की चीजें हैं, खून से जुड़ी हुई हैं, तो ये अंतर कैसे पता चलता है? मतलब एक आम व्यक्ति को,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: डॉक्टर को तो मालूम है खून की कमी अनीमिया से है या थैलेसीमिया से है, ये कैसे खुद जाना जाए?
0: हाँ जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। तो अनीमिया तो बड़ा कॉमन है और ज़्यादातर आयरन की या फोलिक एसिड या B12 की कमी के कारण होता है, खाने पीने की कमी के कारण होता है। थैलेसीमिया तो अनकॉमन

0: कॉमन है, इतना जितना अनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है वो तो 60-70% बच्चों में देखा जाता है। थैलेसीमिया तो बहुत कम कॉमन है, तो इसलिए थैलेसीमिया की चिंता तो सिर्फ प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगानी चाहिए। ज़्यादातर तो थैलेसीमिया कारण अनीमिया का नहीं होता, अगर डाउट है तो अपने लोकल डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं।
1: अच्छा, जो थैलेसीमिक बच्चा है उसे खाने पीने का क्या ध्यान रखना पड़ता है?
0: नॉर्मल खाना, थैलेसीमिया के लिए कोई स्पेशल खाना नहीं है। हम तो एनकरेज करते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह रखो, नॉर्मल खेलना कूदना, नॉर्मल स्कूल जाना, नॉर्मल पढ़ाई करना, कोई स्ट्रेस का चक्कर नहीं है, कोई खेलने कूदने का चक्कर नहीं है, नॉर्मल खाना पीना, बिल्कुल रेगुलर नॉर्मल लाइफ, बस रेगुलर ब्लड चढ़ाना है और रेगुलर आयरन कम करने की दवाई देनी है।
1: यहाँ आयरन कम करने की दवाई देनी, वहाँ आयरन को बढ़ाना है।
0: ये आपने अच्छा पकड़ा,
1: तो काफी चैलेंजिंग काम है आपके लिए।
0: हाँ, मतलब कि अलग अलग बीमारियां हैं तो मतलब कि पेशेंट्स को भी कोऑपरेट करना होता है, हम भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो धीरे धीरे रेगुलर टाइम के साथ इलाज होता है।
1: श्रोताओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस मामले में?
0: सो वही जो पहले का मैं एक बार रिपीट करूंगा कि 6 महीने तक के बच्चे को रेगुलर माँ का दूध देना सबसे बढ़िया है, पर फिर 6 महीने के बाद उसको कम करना ज़रूरी है। और ऊपर का खाना जैसे दलिया, खिचड़ी, पालक, सरसों का साग, मेथी, सोयाबीन, चना वगैरह सब देना शुरू करना ज़रूरी है, ताकि सिर्फ दूध पे हम निर्भर ना रहें। रेगुलर जो सरकार का प्रोग्राम है अनीमिया मुक्त भारत अभियान, उसके तहत आपको लोकल सिविल हॉस्पिटल में जाना है या डिस्पेंसरी में जाना है और हफ्ते में 2 दिन बच्चे को आयरन की दवाई देनी है, 6 महीने से लेके 5 साल तक, और फिर 5 साल से 19 साल तक हफ्ते में 1 दिन। ये आप लोकल अपने सिविल हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करेंगे या डिस्पेंसरी में तो आपको रेगुलर दवाई मिलेगी। और दूसरी चीज़, जब प्रेगनेंसी होती है एडल्ट्स में, तो फर्स्ट पहले 1-2 महीनों में जैसी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ताकि पता चल जाए कि मदर में माइनर है या नहीं, और अगर मदर में माइनर है तो फिर हस्बैंड का टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है।
1: ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं और फ्यूचर किस तरह का होगा, कैसा नहीं होगा, उसके बारे में पहले पता करना, इसके बारे में आपको हम दाद देते हैं, आपकी रिसर्च को दाद देते हैं।
0: थैंक यू सो मच जी।
1: बहुत सारी मुश्किलों से आप पहले ही बचा लेते हैं, और मुझे लगता है इसके लिए हमें जागरूक होना इस मामले में बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि शहरी इलाकों में लोग जागरूक हैं, लेकिन छोटे कस्बों में अभी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बड़े शहरों में भी पहुँचता है, छोटे कस्बों में, गाँव में भी जाता है, और आपकी बात आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हर एक को सुनने वाले तक पहुंचेगी। जो लोग आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि लोग अपनी भी डॉक्टरी करते हैं ना,
0: मुझे तो अच्छा लगता है कि पेशेंट्स इंटरनेट पढ़ के आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, जागरूकता बढ़ती है, आके डॉक्टर से सवाल पूछें, अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि जो छोटे बच्चों के मम्मी पापा हैं वो अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको बोलें कि हमने पढ़ा है कि एनीमिया हिंदुस्तान में बड़ा कॉमन है, तो हमें रेगुलर आयरन की दवाई दो। मुझे वो मरीज पसंद हैं जो मेरे से सवाल करते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जागरूकता होना अच्छी बात है, आप इलाज इंटरनेट से मत करिए, बट डॉक्टर से सवाल तो पूछ सकते हैं।
1: और ये एक ऐसी समस्या है जिसका निदान घर बैठ के नहीं हो सकता, बिना एक्सपर्ट की, डॉक्टर की सलाह के। तो डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, FM लाइफलाइन प्रोग्राम में आपने अनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में जानकारी दी, और जब हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान करें वो पहले अपना ये थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो डॉक्टर दीपक बंसल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं।
0: थैंक यू अनिल जी, आपको भी शुभकामनाएं।
1: क्योंकि जिनमें खून नहीं है उनका आप खून बढ़ा रहे हैं, और जहां खून की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनका खून आप कम भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बैलेंसिंग जो आप कर रहे हैं बहुत नेक काम आप कर रहे हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो इस प्रोग्राम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रेम सिंह ने। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
2: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
1: अभी आपने कार्यक्रम सुना FM लाइफलाइन।

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। दिन के 11:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम, सुने हैं मित्रा दे।
5: सुने हैं मित्रा दे, त्वाडे दिल खिचवे सुने हैं, त्वाडे दिल दा हाल ते पंजाबी गीतां दी तमाल जी, सुने हैं मित्रा दे।
4: लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हैं मित्रां दे लै के अज तुहाडे नाल है तुहाडा मित्र अनिल पुंज। हुण तो लैके 12 बजे तक असी तुहाडे नाल रहांगे, तुहाडे सुने हैं इस प्रोग्राम च शामिल करांगे ते इन्हां नूं सजावांगे कुछ पंजाबी गीतां दे नाल। प्रोग्राम च सुने हैं देण लई साडे नंबर ने 2660615, 2660617 ते 2660619, 1-5-1-7-1-9 ये 3 numbers ने। इन्हां चों किसी एक नूं डायल कर लो ते साडे नाल गल्लबात कर लो, यानी अपना सुनेहा दे दिओ। साडे पहले स्रोते ऑनलाइन ने। प्रोग्राम सुने हैं मित्रां दे जी।
6: हेलो, सत श्री अकाल भाई जी, मैं राम बोल रहा हूं 77 मोहाली से
4: जी। राम जी, राम राम।
6: राम राम भाई जी, राम राम।
4: की हाल है तुहाडा?
6: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ।
4: ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਮ ਜੀ।
6: ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ
4: ਭਾਜੀ।
6: ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਡਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ
4: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
6: ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ
4: ਜੀ, ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ।
6: ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਜੋ ਕਰੋਗੇ।
4: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
6: ਹਾਂ ਹਾਂ

0: अभी आपने लाइव फोन इन प्रोग्राम सुना, सुने हैं मित्रां दे। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने वाले हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकर के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया।

0: रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:05 हुए हैं। आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए, यादों की महफिल।

बसेरा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज आर डी बर्मन की तर्ज। आशा भोसले, आर डी बर्मन, गुलजार, इजाजत।

0: अशोक भोसले की आवाज आरडी बर्मन की तर्ज है। फिल्म का नाम है नमकीन।
1: एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें। फिल्म का नाम है लिबास।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

फिल्म का नाम था हू तू तू। गुलजार भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर फिल्म रूदाली।

इसी गाने के साथ ही अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बज चुका है, अब जानकारी हमारे बाकी के कार्यक्रमों की।

प्रादेशिक समाचार हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। यही क्रम रहेगा शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 2:15 पर, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11:00। स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे शाम 5:30। शाम 6:30 पर अमृतवाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शबद। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों के बारे में भी आपको बता दें, दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर प्रोग्राम आप सुनेंगे, 2 त्रिवेणी कार्यक्रम होगा, 2:30 सदाबहार नगमे प्रोग्राम में कुछ पुराने फिल्मी गाने, 3 प्रोग्राम सखी सहेली,

टॉक शो पिटारा में शाम 4 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा से और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से। इस बातचीत का पहला भाग आप सुनेंगे टॉक शो पिटारा में शाम 4 बजे। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम, कुछ फिल्मी गाने फौजी भाइयों के लिए उनके मनोरंजन के लिए। रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में झलकी आप सुनेंगे एक पत्र अंग्रेजी से। अभिनेत्री मनीषा कोइराला पर केंद्रित है आज के फनकार प्रोग्राम रात 9:30 बजे। 10 बजे सुनिए प्रोग्राम छाया गीत।

लोक 9 बजे आपके लिए। ये थी जानकारी अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, कुछ जो आप हमारे केंद्र से सुनते हैं और कुछ हम जो विविध भारती मुंबई से आपके लिए रिले करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:05 होने को हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दी है। इससे करीब 7,900 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का अनुमान है। इन मंजूरियों से 82,000 करोड़ रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन और 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से आए हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7 तथा महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। इन परियोजनाओं में एसलीटलीन ब्लैक, स्पीकर माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉयल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। श्री वैष्णव ने बताया कि इन 31 मंजूरियों के साथ ECMS के तहत अब तक 106 कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था, जबकि यह अब 69,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2,50,000 लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: उन्होंने कहा कि नई मंजूरियों, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और उन्नत विनिर्माण क्षमता विकसित करने में मदद करेंगी, जिससे भारत के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने को और गति मिलेगी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना के सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। हरियाणा सरकार ने एक विशेष वित्तीय प्रणाली तैयार की है, ताकि विजिलेंस ट्रैप के लिए रिश्वत की रकम देने वाले शिकायतकर्ताओं को भ्रष्टाचार की जांच के दौरान अपनी जेब से खर्चे पैसे जल्दी वापस मिल सकें। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए सरकार ने हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो रिवॉल्विंग फंड बनाया है। इसका मकसद खासतौर पर उन शिकायतकर्ताओं को रिश्वत की रकम वापस करना है, जिन्होंने ट्रैप बिछाने के लिए पैसे दिए थे। इस फंड का प्रबंधन हरियाणा के राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के महानिदेशक करेंगे। इस कदम से उन नागरिकों के लिए पैसे की वापसी का एक

0: औपचारिक तरीका बन गया है जिनका पैसा रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। चंडीगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान कल सेक्टर 42 स्थित न्यू लेक में आयोजित भव्य एवं उत्साहपूर्ण समापन समारोह के साथ समाप्त हो गया। कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ प्रशासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित इस रैली में समारोह का एक प्रमुख आकर्षण बाइक एवं विंटेज कार रैली रही। इसके उपरांत प्रशासक ने आयोजन स्थल पर लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों और प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत हथियारों और ड्रोन की प्रदर्शनी के साथ साथ IDPP द्वारा आयोजित हथियार प्रदर्शनी, कराटे प्रदर्शन और डॉग शो भी देखा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। खेतीबाड़ी दे किसान भलाई मंत्रालय ने कहा है कि 14 अगस्त तक सौनी दियां फसलां दी बिजाई हेठ रकबा 1,000,00,000 हैक्टेयर तो वध हो गया। झोने दी बिजाई 359,00,000 हैक्टेयर तो वध रकबे च होई है। 184,00,000 हैक्टेयर तो वध रकबे च तेल वाले बीजा, 172,00,000 हैक्टेयर तो वध रकबे च मोटे अनाजा की बिजाई की गई है। इस दे नाल ही कपाह हेठला रकबा 107,00,000 हैक्टेयर तो वध अते दालां हेठला रकबा 108,00,000 हैक्टेयर तो वध है। गन्ने की काश्त 58,00,000 हैक्टेयर तो वध रकबे च की गई है। एक हफ्ता चली हर घर तिरंगा मुहिम की समाप्ति बीती शाम चंडीगढ़ विखे एक शानदार समारोह नाल हुई है। इस समारोह च भारती आधुनिक दे माण प्रगति दे छावां नूं दर्शाउंदे हुए राष्ट्रीय झंडे दा जशन मनाया गया। वंदे मातरम दी थीम ते आधुनिक भारत दीआं हालियां प्राप्तियां बारे विशेष तौर ते तैयार कीते गए शानदार लाइट लेजर एंड साउंड शो मौजूद सैकड़े लोगों लई खिच दा केंद्र रहे। समाप्ति समारोह दा हिस्सा बनन लई आए नागरिकां ने उत्साह ने तिरंगे च राष्ट्रीय एकता देशभगती ते मान दे सुनेहे नूं होर मजबूत कीता। इस मौके पंजाब दे राजपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने समारोह दे मुख मेहमान वजों शिरकत कीती। बाइक ते विंटेज कार रैली देश दी अमीर विरासत, एकता ते राष्ट्रीय मान नूं दर्शाउंदे संगीतिक नृत्य, भारतीय फौज ते IDPP वल्लों हथियार ते ड्रोन प्रदर्शनां दी पेशकारी ते कुत्तियां दा शो समाप्ति समारोह दे कुछ मुख आकर्षण रहे। पेंडू खेतरां च जनतक आवाजाई दी पहुंच नूं बेहतर बनाउण लई इस साल सितंबर दे अंत तक 100 विश्व पद्धरी PRTC जूनियर बसां अधिकारत तौर ते PRTC दे बेड़े च शामिल होणगीआं। सूबे दे ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इह ऐलान करदिआं दस्सिआ कि चल रहे बुनियादी ढांचे दे अपग्रेडेशन ते सेवा दे विस्थार दा मुलांकण करन लई ट्रांसपोर्ट विभाग दे उच्च अधिकारियां नाल कीती इक व्यापक समीक्षा मीटिंग तों बाद कीता गया। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दस्सिआ कि पूरी तरह तैयार कीतीआं बसां आयशर वल्लों तैयार ते डिलीवर कीतियां जा रहीआं ने। उच्च पद्धरी समीक्षा मीटिंग दौरान ट्रांसपोर्ट मंत्री ने विभाग नूं खास तौर ते जनतक ट्रांसपोर्ट सेवावां दी गुणवत्ता नूं होर उच्चा चुक्कण दे उद्देश नाल विचार पेश करन दे निर्देश दित्ते। उन्हां ने PRTC ते पारन बस दोवां दी लंबे समें दी वित्तीय स्थिरता ते संचालन मजबूती नूं यकीनी बनाउण लई आमदन दे साधनां नूं वधाउण ते वी जोर दित्ता। उन्हां ऐलान कीता कि राज दे बेड़े च 1,279 नवीं बसां शामिल कीतियां जा रहीआं ने। इस नाल सरकारी बसां दी गिनती 2,267 तों वध के 3,546 हो जाएगी। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने कल जलंधर दे वख-वख इलाकियां च 1,93,00,000 रुपए की लागत वाले 3 सड़क प्रोजैक्टां दा नींह पत्थर रख्या। इस मौके बोलदिआं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करके सूबे दे सर्वपक्षी विकास नूं यकीनी बनाउण लई वचनबद्ध है। श्री भगत ने दस्सिआ कि जलंधर भर विच नियमित ढंग नाल वड्डी गिणती च विकास प्रोजैक्ट शुरू कीते जा रहे ने जिस नाल शहर तेजी नाल विकास की राह ते अगे वध रिहा है। इस मौके कौंसलर मुकेश सेठी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने विकास कार्जां लई फंड की कोई कमी नहीं है ते कई होर प्रोजेक्ट प्रक्रिया अधीन ने। उन्हां कहा कि सरकार वल्लों निवासियां नूं बेहतर शहरी सहूलतां प्रदान करन ते सड़क ढांचे नूं होर बेहतर बनाउण ते जोर दित्ता जा रहा है। खेडां वतन पंजाब दीआं दा चौथा सीज़न 3 सितंबर तों शुरू होण जा रहा है। इस बारे मशाल 12 अगस्त नूं संगरूर तों चल के फतहगढ़ साहब हुंदी हुई अज मोहाली पुज्जी जिस दा स्वागत मोहाली दे सैक्टर 78 स्थित खेड कॉम्पलैक्स च कीता गया। इस मौके जूनियर हाकी दे ओलंपिक कप्तान हरजीत सिंह तुली, विद्यार्थी, अध्यापक ते होर खिडारी मौजूद रहे। मशाल दा स्वागत मैंबर पार्लीमेंट मालविंदर सिंह कंग अते मोहाली दे विधायक कुलवंत सिंह ने कीता। इस मौके उन्हां कहा
2: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆਈ ਆ

आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य हैं। आज ही अपनाएं BSNL।
3: तो इस समय आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। फिल्म संगीत में अगला गाना है सुदर्शन फाकिर का लिखा हुआ, इसमें संगीत है जयदेव का, भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गाना है। ये फिल्म है दूरियां।

भूपेंद्र और अनुराधा को अभी आपने सुना, ये फिल्म थी दूरियां। फिल्म संगीत के आखिर में मुकेश का गाया हुआ गाना आपको सुनवा रहे हैं, दो रास्ते। ये फिल्म है, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: दो रास्ते फिल्म का ये टाइटल गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। इसी के साथ ही अब फिल्म संगीत खत्म होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई हमारे अगले प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है सुरीला सफर।

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक श्रोता का जवाब आया है, जेते जेते पोथो होले देरी, ये बांग्ला गीत था जिस पर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं ये गाना बना था। जेते जेते पोथो होले देरी, ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बम्बई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपाकली, ये हैं सुचित्रा सेन की हिंदी फिल्में। क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल

छू लेने वाला है। मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बंबई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था जेते जेते पोथो ले देरी। क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था, लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं, कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने, कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता भोपाल छोड़ाए छोड़ा है हम वो गलियां। एक और श्रोता राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

गुलजार साहब को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार किस गाने के लिए मिला, ये भी बताइएगा। और ये आवाज किस बेमिसाल गायक की है। सुरीला सफर गुलजार स्पेशल विविध भारती।

बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हों, निराश हों या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं, वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां, एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नज्मों में जब नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा हो ना उजाला, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये आनंद फिल्म का संवाद जो बहुत सारे श्रोताओं के दिल के करीब है आपने लिखा, मुझे लगा कि ये जरूर पढ़ना चाहिए। तमाम श्रोताओं की कमेंट, तमाम श्रोताओं का गुलजार के प्रति प्यार जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और गुलजार साहब की वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, वो था सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का डंका, जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये है कमाल। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले एक श्रोता लिखते हैं कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में है और बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शादी के बाद हम अपने मायके की गलियां छोड़ आए, बहुत याद आती है। राजेश रोशन का संगीत था ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर मैं खंडवा जाता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आप भी तो अपना शहर छोड़कर आए हैं, उन्होंने मेरे शहर का नाम भी लिखा है। इसके अलावा एक और भी श्रोता हैं जो कहते हैं कि गुलजार बहुत सहज सरल भाषा में अपने गाने लिखा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना डूब गई हमारी एक श्रोता कि उनका दूध का भगोना जल गया। बताइए क्या कहें हम, किस फिल्म का है ये गाना जरा बताइए।

किनारा फिल्म का ये गाना एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा वक्त की जेब में सुराख बहुत हैं, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले हैं, एक हवा का झोंका और सब कुछ ओझल, उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं, एक और श्रोता है जो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा गाना है। कई श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि क्या हो रहा है।

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना शाद अली निर्देशक। किसी ने फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल सुरीला सफर।

दो दूनी चार 1969 में बनी फिल्म बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए, छाओ छम से नीचे कूदी, क्या पंक्ति है। ये सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद है गाना, और गुलजार साहब स्पेशल को आगे बढ़ाते हुए अब अगला गाना।

0: बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसा गाना जिसमें गुलजार साहब के शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी नजर आती है।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: धन्नों का गुस्सा और धन्नों की आंखों में क्या बात है। गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब, गुलजार स्पेशल। ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है एक सुरीला सफर।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप। देखिए ना, सारी वादी भर गई।

गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं। भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करती हैं, तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें। जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहें। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

अपनी आंखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच भी कराना चाहिए।

आखेनो सब देखिए आंख न देखी जाए। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं वही आंखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर्दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से ना जान सके, ना पढ़ सके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने डीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री VD सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित

0: किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्टास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में।

0: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
1: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

सदाबहार नगमे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कशिश फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, संगीत कल्याण जैन जी का।

0: अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी देखिए बस मेरा मन कर रहा है कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं।
1: अच्छा कीजिए सवाल से वैसे डर लगता है कि पता नहीं क्या वो कौन सा सवाल आप पूछ बैठेंगे।
2: पिछली बार आप मुझे चौंका रही थी तो मैंने कहा हम भी चौंका देते
1: लेकिन हम अच्छा, डरने वाले थोड़ी ना है।
2: बताइए वो तो मुझे पता है। ये बताइए कि आपने गाड़ी चलाई, वाहन चलाया, दो पहिया, चार पहिया कुछ चलाया आपने?
1: क्यों बताए, नहीं बताएंगे?
2: बताना तो पड़ेगा
1: क्योंकि हम जानते हैं अगला सवाल क्या होगा कि आपको डर लगता है कि नहीं।
2: वो तो वो नहीं है बिल्कुल।
1: देखिए हम सच बताएं तो साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया और गिर गए, चोट लगी, सिर से खून बहने लगा और खूब खून की धारा बही। तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया। फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो, जबकि जरूरी था। और लेकिन हाँ, लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं, लेकिन वो जो डर है ना,
2: डर बैठ गया
1: वो डर निकला नहीं। तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस डर को निकालें।
2: बिल्कुल सही।
1: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सपने नहीं देख पाएंगी। सपने देखने के लिए डर निकालना और आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है।
2: और उनकी जो सीखने की ललक होती है उसमें रंग में भंग भी नहीं डालना चाहिए, है ना?
1: तो बस जी, तो आज तो सारे विषय एक साथ समेट लिए गए हैं एक ही बात में।
2: और सखी विशेष में हम बात करेंगे नीरू शर्मा जो इंफीबीम की सह संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे।
1: और मुहावरों की जो दुनिया है ना, रंग में भंग डालना, तो हमने जो मुहावरे बताए हैं, हमारे श्रोता कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आज के दौर में मुहावरों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं?
2: बिल्कुल, जैसे कि ममता जी जब लंच का टाइम होता है तो कहते ही घर में कि भाई जल्दी परोसो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है ना। और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे, क्या कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में।
1: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद खाने के लिए।
2: बिल्कुल,
1: तो ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें। और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है, बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं। और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। संस्कार सिखाएं जरूर लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं, आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरें पैदा करें।
2: सही बात है, क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात कहने में। कई बार होता है ममता जी, अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती, मन की बात कहना होता, कुछ करना चाहती तो 10 बार सोचती कहें कि ना कहें, कोई मना तो नहीं कर देगा, डांट तो नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों के मन, लड़कियों के मन से निकाल दें कि भाई डरो मत, जो भी कहना कहो, खुले दिल से कहो।
1: आप भी अपना सवाल अपने मन से अब निकाल दीजिए और अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हम पूछ रहे हैं कि ये जो पहला वाहन वाला विषय हमने रखा है तो आप बताइए कि बचपन में पहला वाहन साइकिल था, बाइक, स्कूटी थी, क्या था?
2: साइकिल ही थी हमारी तो। और हम साइकिल जो थे, हम और मेरी जो बहन थी, हम लोग पत्थर पर खड़े हो जाते थे, फिर साइकिल पर बैठते थे, चलाते थे,
1: क्योंकि हाइट उतनी नहीं पहुंचती तो साइकिल, क्योंकि बच्चों के नाम से साइकिल खरीदी नहीं जाती थी, वो बड़े भाई बहनों की साइकिल होती थी इसलिए।
2: बिल्कुल वही हाल था, लेकिन उसमें क्या होता था, हम लोग सीधे सीधे तो चलाते चले जाते थे, अब मोड़ना तो आता नहीं था, तो उधर ही गिर पड़ते थे, फिर वहाँ कोई पत्थर ढूंढते थे, उस पे चढ़ते थे,
1: क्या बात
2: फिर
1: है।
2: वापस
1: और साइकिल

0: एक कोई चलाता
1: जी
0: था और एक साइकिल पीछे एक जो कैरियर होता था उस पे बैठता था, और वो नहीं तो आगे जो साइकिल का डंडा होता है उस पे बैठता था।
1: लेकिन कैंची, जो लड़के कैंची
0: हाँ
1: चलाते हैं ना, वो मुझे कभी नहीं, कोशिश भी करी तो कई बार गिरी गया, चोट भी लगी,
0: तो
1: लेकिन
0: खैर ये हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि उनका जो पहला वाहन था क्या था, और अपने अनुभव साझा करें।
1: बिल्कुल
0: क्या हुआ जब पहली बार आपने साइकिल चलाई, या कोई और वाहन, दो पहिए का रिक्शा भी हुआ करता था ना बहुत छोटे, जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते, मतलब 5-6 साल की उम्र में 3 पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया
1: साइकिल
0: जाता
1: जाता है
0: था
1: बच्चों को
0: जिसको।
1: जो साइकिल होती थी
0: हाँ,
1: छोटी।
0: तो वो भी अगर आपको याद हो, आपके जहन में हो, वो याद ताज़ा हो, तो ज़रूर साझा करें। फिलहाल गाना सुनवाते हैं ये।

0: मंजरी जी कहाँ खो गई आप, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई हैं, लेकिन टिप्पणियां तो पढ़ेंगे लेकिन जरा कुछ चर्चा भी तो कर ली जाए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बेटियां जब घर में आती हैं, मतलब एक बेटी पैदा होती है तो जश्न नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज जमाना बदल गया है, अब बेटी पैदा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं और आज जश्न मनाने का चलन शुरू हो गया, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और जहाँ पर ये चलन नहीं है वहाँ पर अपनाया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियाँ परिवार की मुस्कान ही नहीं होती बल्कि बड़े नाज से बच्चों की परवरिश भी की जाती है बेटियों के लिए। बात जब उनकी आती है तो बहुत सारे रीति रिवाज का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लोग समझाने लगते हैं, समझाइश की पोटली लेकर खड़े हो जाते हैं।
1: और कहा भी जाता है कि जब, हमें याद है ममता जी जब छोटे थे तो यही कहते थे कि नहीं ये सारे काम कर लो, चाहे टोकरी से प्याज ही ले आओ, लहसुन ले आओ, छील दो, तो ये छोटे छोटे कटोरी ले आओ, ग्लास,
0: घरेलू काम,
1: घरेलू काम से शुरुआत ही कर देते थे कि ये करना है, अच्छा अंधेरा होने से पहले घर के अंदर ही आ जाना है, बाहर नहीं जाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें माँ अक्सर सिखाया करती है अपने बच्चों को। और हम अक्सर बेटियों को संस्कार, मर्यादा और जिम्मेदारियाँ सिखाने पर जोर देते हैं, लेकिन आज के समय में इतना ही काफी नहीं है। उन्हें संस्कारों के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
0: आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है क्या नहीं, क्या सही है, तो ये संस्कार देना जरूरी है। लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है, कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती हैं, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, उनके मन में भरा होता है कि अरे बाप रे अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो इससे लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
1: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए, उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी दिखावा से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ये भी कि हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा झुक के चलो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जरा ठीक से चलना, वहां जाना तो देखना, ज्यादा लड़कों से बात मत करना, नहीं तो लोग देखेंगे तो शिकायतें आएंगी, इन सब से मुक्त कर देना चाहिए। अब उनके करियर के बारे में बात करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आप आज दिन भर में क्या किया, कौन से अखबार पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, और आज जो तकनीक का जमाना है तकनीक में कौन सी नई तकनीक सीखी। हमें नहीं लगता हम अपने इर्द गिर्द कोई माँ घर में अपनी बेटी से अमूमन दिन भर में ये सवाल पूछती है, बेटे से ये सवाल पूछा जाता है लेकिन बेटियों से नहीं।
1: पहले देखिए ये ऐसा होता भी था कि जैसे कि कोई चीज दिलानी है तो नहीं भाई अभी तुम्हें नहीं दिलाएंगे बाद में दिलाएंगे, या सिखाने की बात होती जैसे साइकिल की बात है वाहन ही सिखाने की बात है तो उसमें भी 10 तरीके की बातें की जाती थी बेटियों से कि अगर चलाओगी तो गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें अक्सर ही हुआ करती थी। तो जैसा आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है, आप उसको समझ नहीं अच्छा, तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
0: ना करने का एक फायदा भी होता है कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते हैं। बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते रिश्तेदार उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण कर जाते हैं, जैसे बैड टच, गुड टच का उन्हें ध्यान नहीं दिलाया जाता है, और घर के ही लोग, मामा चाचा, रिश्ते में भाई लगने वाले लोग उनके, मतलब स्पर्श के साथ दुर्व्यवहार करना करते हैं, जिसका असर उनके मन पर बड़े होने पर रहता है, बड़े होने
1: रह जाता है, उनके मन पर रह जाती है बात।
0: और हमें भी बहुत कुछ मन में रह जाता है जब हम बोलने लगते हैं, लगता है कि अभी ये तो रह गया, थोड़ा सा और रह जाने देते हैं, एक विराम यहाँ पर लेते हैं।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गुड टच बैड टच वाला, कि घर में भी ऐसे माहौल होते हैं कि इस तरह से बच्चों को सामना करना पड़ता है और मन पर उनके गहरी छाप पड़ जाती है बड़े होने तक, तो इस चीज़ को ही कहना चाहिए कि उस समय भी बच्चों को अपने सिखा के रखे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत आकर के हमको बताओ, अपने अंदर वो डरो मत, उस बात को दबा के मत रखो, अभी
0: वो तो तभी होगा जब आत्मविश्वास पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो क्योंकि अगर हम संस्कारों के बोझ तले उन्हें दबा देंगे तो उन्हें कभी निडर वो हो ही नहीं सकते हर चीज को,
1: इसीलिए तो है कि आप तुरंत ही बच्चों को बोलो, तुरंत ही आके बताओ, तो तब आप इस चीज से बच सकते हैं। और ममता जी देखिए हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश इस विषय पर लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि बेटी को सिर्फ संस्कारों की डोर में बांध देना काफी नहीं है, उसे वो पंख भी देने होंगे जिससे वो बिना डरे अपनी उड़ान भर सके। संस्कार उसे सही गलत का फर्क सिखाते, पर आत्मविश्वास और निडरता उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है, और ये दोनों उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला देती है। जब हम सिर्फ संभल कर रहो कहना छोड़कर तुम कर सकती हो कहना शुरू करते हैं, जब गिरने पर हाथ पकड़कर उठाने के साथ उसे खुद संभलना भी सिखाते हैं, तभी वो बेटी किसी के मोहताज नहीं रहती। वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता का संयोग बन जाए तो वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बेटियां केवल लाज की मूर्तियां नहीं हैं, आंधियों से लड़ती हुई दुर्गा हैं। बेटियों में संस्कारों की छांव तो जरूरी है, लेकिन उड़ान भरने के लिए हौसलों का खुला आसमान देना भी जरूरी है। तो अब क्या, अब सुनते हैं ये गाना।

0: तो देखिए, बेटियों को जो है ना ममता जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि पॉकेट मनी से लेकर सेविंग तक बेटियों को पैसों का महत्व और मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है, और उन्हें ये एहसास कराएं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना भी असली स्वतंत्रता है। और इसके साथ साथ बेटियों को योग, मेडिटेशन और फिटनेस की भी आदत डालें, साथ ही उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताएं, समझाएं, ताकि वे तनाव या दबाव से आसानी से उबर सके। और हमारे साथी भी संदेश में लिख रहे हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार के साथ अपने फैसले लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दीजिए। ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे सम्मान करना भी जाने और अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाना भी, क्योंकि संस्कारी बेटी परिवार की पहचान होती है और आत्मनिर्भर बेटी समाज की ताकत होती है।
1: और साथ में ये भी कहना है कि बेटियों के भीतर समानता के विचार को भी रोपें, समानता की समझ हो और उन्हें सिखाएं कि वे किसी से कम नहीं हैं। घर के काम से लेकर बाहर के फैसलों तक, बाहर के काम तक उन्हें बराबरी का हक दें और यही सोच उनमें विकसित करें कि अमूमन होता क्या है कि घरेलू कामकाज में तो महिलाओं को सिखाया जाता है, उन्हें पारंगत किया जाता है, लेकिन जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है और पोस्ट ऑफिस जाना है या बाहर का जो भी काम है,
0: काम होता है,
1: तो वो उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए। जूडो कराटे

0: सिखाया जाए,
1: मार्शल आर्ट है सारी
0: मार्शल
1: चीजें।
0: आर्ट और बैडमिंटन, मतलब खेल की ओर उन्हें उन्मुख किया जाए, तो अपने आप शारीरिक फिटनेस आ जाती है। और
1: बिल्कुल
0: अगर शारीरिक फिटनेस है तो मन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर
1: बिल्कुल,
0: मन में कोई उनके
1: खुलकर खुलकर सोच सकती हैं
0: मन
1: वो।
0: में अगर कोई उनके दुविधा चल रही है तो खुलकर उनसे पूछें, बात करें और उन्हें समझाएं कि हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या से जूझ रही है आपकी लड़की, जिसे वो बताने में संकोच कर रही है क्योंकि आपने संस्कारों के बोझ तले उसे दबा डाला है,
1: बिल्कुल
0: तो उसे बैठे घर वाले और ये नहीं कि कोने में ले जाके चुपके से बात करें, उसे सबके सामने बोलने की, बतियाने की, अपनी बात कहने की आदत डालें। तभी वो स्कूल में बोलेगी, क्लास में बोलेगी, तभी अपने दोस्तों मित्रों के सामने अपना मुंह खोलेगी।
1: सही बात है आपने कही बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बेटियों को संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाए। आज का ये टॉपिक मेरी बेटी पर सटीक बैठता है। आज हम उसको छोड़ने जा रहे थे, वो दिल्ली जा रही है, वो वहाँ से अपनी नई उड़ान भरने वाली है। स्पेन के लिए MBA करने का ये फैसला पिछले 4 साल से देखा गया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। बेटी तो खुश है ही, उसके साथ हमारा पूरा परिवार खुश है। आज घर के चौथे नंबर का बच्चा बाहर गया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है, आपने अपने बच्चे को इतना अच्छा मौका दिया है कि वो जा रही है और बाहर जाके पढ़ के आएगी। परिवार
0: हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो बातें हैं बेटियों के लिए, एक समझदार माँ ही कर सकती है। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है, जो आज उन्हें काम आ रहा है। बड़े की नौकरी जॉब में चला गया है, बहुत टूट चुका था। साथ के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसे मेरी सिखाई बातें याद आ रही थी कि जीवन में कितने भी संग्राम खड़े हो जाए, जान की नहीं सोचना, उसे बचा लेना और लड़ने की ताकत मन में रखना। ये दिन कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में अपना वक्त आ जाता है। ये तो बहुत ज़रूरी बात इन्होंने लिखी है, थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में इन्होंने लिखा है, लेकिन अपनी बात कह गए हैं। ये
1: जी
0: इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार संस्कारों के बोझ तले, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो,
1: जी
0: इतना लाद देते हैं कि उनके अंदर ये बात ही, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर हैं, चौराहे पर खड़े हैं, तो वो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें
1: बिल्कुल
0: बड़ों का अदब करो, बड़े संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है
1: जी
0: उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
1: सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार रखें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, निडर और संस्कारी बेटियों की परवरिश ही देश की तरक्की का मूल है। और साथी हमारे लिखते हैं कि जब बेटियां मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे जीवन के हर कठिन निर्णय को खुद लेने में सक्षम बनती हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ज़रूरी है, बेटियां खुद अपने भविष्य और करियर के बारे में सही फैसले ले सकें, उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुद की रक्षा और आवाज़ उठाना सीखें।
0: हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं ममता जी, समय के साथ साथ हम माएँ भी समझदार हो गई हैं, अब बेटा बेटी समान है, बल्कि सच कहें तो बेटियां दो कदम आगे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर
1: जी
0: कि आप सुनने के साथ साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में और त्वरित टिप्पणी भेज रही हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि सारी माएँ ना समझी क्या बर्ताव करती हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसी परंपरा चली आ रही है।
1: और
0: और
1: एक एक
0: हमारे एक
1: जी
0: श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज ज़माना बदल गया है। जी आप कुछ कह रही थी मंजरी जी।
1: नहीं नहीं हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रही हैं, लिखती हैं कि बच्ची, किशोरी, कुमारी, ये बेटियों की अवस्थाएं संस्कार क्षम कही जाती हैं। आकाश को लांग कर चांद तक जा पहुंची आज की दुनिया में, अब रहन सहन, परिधान, बोली भाषा, आहार विहार, शिक्षा, इन सभी संस्कारों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। छुई मुई कोमल अबला नहीं तो आत्मविश्वास से संपन्न निडर बेटी है, ये हर पालक का सपना बन रहा है। इसीलिए तो बेटी को भेदभाव रहित लालन पालन करना जरूरी है, दया, क्षमा और शांत को साथ लेकर हक के लिए आवाज उठाना, आत्मसंरक्षण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक साक्षरता, अन्याय का प्रतिरोध करना जैसे भावनात्मक दृढ़ता वाले बढ़ाने वाले संस्कार हर बेटी को मिलने चाहिए। बहुत सुंदर सी बात लिखी
0: हमारी
1: आपने।
0: एक सखी लिख रही है कि निडर बेटियां विपरीत परिस्थितियों में घबराती नहीं, बल्कि अपना बचाव खुद करने में सक्षम होती हैं। जब बेटियों में

0: विश्वास होता है तो वो अपने करियर, जीवन और अधिकारों से जुड़े बड़े फैसले खुद कर पाती हैं। समाज के रूढ़िवादी तानों और दबावों के सामने वे कभी मानसिक रूप से टूटती नहीं। एक बात मैं गौर कर रही हूँ मंजरी जी, कि आज के इस विषय में ज़्यादातर महिलाओं की ही टिप्पणी आई है, पुरुषों की टिप्पणी कम मिल रही, क्या बात है? हमें लगता है इस मुद्दे में वो सहमत नहीं है क्या? वैसे अगर सहमत होंगे या नहीं होंगे तो अपनी टिप्पणी आगे साझा कर सकते हैं, हम पढ़कर सुनाएंगे
1: जी।
0: और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है, जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉगिन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती, पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और ब्रेक पर जाने से पहले मंजरी जी, हम बात कर रहे थे कि बेटियों को सिर्फ संस्कार के बोझ तले ना दबाएं, बल्कि उन्हें निडर बनाएं, आत्मविश्वास से भरें उन्हें। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बेटियों को हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि दुनिया कैसी है, उन्हें ये भी सिखाना है कि दुनिया का सामना कैसे करें। संस्कार उनकी पहचान बने और आत्मविश्वास उनकी ताकत बने। उन्हें इतना निडर बनाएं कि वे अपनी बात कहने से डरे नहीं, बल्कि अपने सपनों को छोटा ना करें। और अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है
5: जी,
4: ये सुनते हैं ये गाना।

0: तो भाई ये जो फिल्म थी रश्मि रॉकेट, यहाँ इसमें भी एक ये लड़की की कहानी है जो दौड़ने
1: जी
0: में माहिर होती है।
1: बिल्कुल
0: पुरुष बहुल समाज में लड़कियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और संघर्ष
0: अब
1: करती तभी वो जीतती है।
0: बिल्कुल, तो संघर्ष करने से हारे नहीं पीछे नहीं हटे, बस यही पैगाम है आज के इस मंच से। आज फिर हम अगले मुद्दे पर अब आते हैं। किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से होती है। नीरू शर्मा की उद्यमिता की कहानी भी ऐसे ही एक विचार से शुरू हुई। भारत में ई कॉमर्स को आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने का सपना इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा किया इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आज।
1: नीरू शर्मा भारतीय टेक और ई कॉमर्स क्षेत्र की उद्यमी है और इंफीबीम के सह संस्थापक रही हैं। बाद में कंपनी का कारोबार डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सेवाओं की ओर काफ़ी बढ़ा और नीरू शर्मा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS से की और आगे चलकर अल्काटेल जैसी तकनीकी कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसमें वित्त और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने।
0: और एमबीए के दौरान और उसके बाद उन्हें अमेज़न में काम करने का मौका मिला। वहाँ ई कॉमर्स के कामकाज, ग्राहकों की सुविधा, कीमत और व्यापारिक रणनीतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की प्रेरणा का अहम हिस्सा बना।
1: और भारत लौटने के बाद नीरू शर्मा ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया। इंफीबीम के साथ उनका उद्देश्य केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक सीमित नहीं था, वे ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना चाहती थी जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी, रिटेलर और ब्रांड भी इंटरनेट पर अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: इंफीबीम के शुरुआती दौर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल पर जोर था। समय के साथ कंपनी ने डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स समाधान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया और इंफीबीम के जो एवेन्यूज होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के शुरुआती सूचीबद्ध ई कॉमर्स कंपनियों में गिना जाता है।
1: नीरू शर्मा का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केवल नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव को एक नए विचार में लगाया। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी की समझ और व्यापार की सोच मिलकर समाज और बाजार दोनों में नया अवसर पैदा कर सकती है।
0: और उनकी जो कहानी है इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि सफलता केवल बड़े संस्थान में नौकरी करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अनुभव को किसी नई समस्या के समाधान में लगाने से भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल, और नीरू शर्मा की यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो तकनीकी, व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सफर भी बताता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अनुभव हमें समझ देता है और साहस हमें अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: तीन देवियां फिल्म का गाना था, और मंजरी जी आपने हमसे पूछा था कि पहला वाहन कौन सा था, तो हमने अपना अनुभव बता दिया, आपने भी अपना अनुभव बता दिया। अब जो हमारी सखियां हैं, हमारे सखा हैं, उनके अनुभव भी हम जान लेते हैं। हमारी पहले तो बता दें कि हमारी एक सखी लिख रही कि हम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट शहर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वहाँ से नमस्कार भेजा है आपको भी और पूरे शहर को, विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार पहुँचे। और एक हमारी सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि मेरा पहला वाहन साइकिल थी, जब मैंने 8वीं क्लास पास की तब मुझे मिली थी, हालांकि ये साइकिल नई नहीं थी, मेरे भाई की साइकिल मुझे मिल गई थी। फिर मुझे करीब 6 साल पहले फिर साइकिल का सुरूर चढ़ा और घर में नई साइकिल खरीदने के लिए पति से काफ़ी जद्दोजहद हुई, पर मैंने अपने लिए एक नई साइकिल खरीद ही ली। अभी कुछ ही दिन चलाई थी कि एक दिन मैं साइकिल से गिर पड़ी और मेरे बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। अभी मैं सुबह साइकिल चलाती हूँ पर अब बहुत संभल कर चलाती हूँ।
1: सही बात है, अगर गिरेंगे, कहते हैं ना कि गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, लेकिन हाँ चोट लग गई तो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वही आप अपना ध्यान रखें। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई जो दूसरे शहर में काम करते थे, उन्होंने एक पुरानी लूना खरीदी और उसे ट्रेन से हमारे शहर ले आए ताकि उसे इस्तेमाल कर सकूं। उस समय मैंने सरकारी नौकरी शुरू की थी, उस शुरुआती दौर में जो मोपेड थी उनकी शॉकअप और सस्पेंशन नहीं थे, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे पिता पीछे बैठे थे। गाड़ी के सख्त होने की वजह से वो रेत और कचरे में से भरी सड़क पर गिर गई। मुझे थोड़ी चोट भी आई, ठीक होने में 1 महीना लगा और मुझे बिना वेतन के 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे अक्सर अपनी वो पहली गाड़ी याद आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब 12 साल का था तब घर में पहला वाहन खरीदा था। और बहुत सारे श्रोता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं वाहन से जुड़े
1: जी। और एक लिखते हैं कि उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी बचपन में, और उसके बाद साल 1968 में कॉलेज में दाखिला होने के समय बड़े भैया ने मेरे लिए साइकिल खरीद कर दी थी जो एक अच्छी कंपनी की थी। और 74 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोपहिया वाहन उन्होंने लिया था और बिना गियर वाला, बाद में गियर वाला उन्होंने स्कूटर लिया। अब बढ़ती उम्र में बिना गियर वाला स्कूटर वो चला रहे हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं, हमारी सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि जब मैं 9वीं कक्षा में थी तभी अपने नाना नानी के पास पढ़ाई करने आ गई थी, तब मेरे नाना जी ने मुझे साइकिल खरीद कर दी थी। वो एक लेडीज साइकिल थी और मुझे सिखाई भी नाना जी ने। हमारे घर के सामने एक वॉलीबॉल ग्राउंड था, वहाँ पर मैंने खूब साइकिल चलाई और मैं साइकिल पर चढ़ तो जाती थी लेकिन उतरना नहीं आता था। अपने सहेली के साथ स्कूल जाती थी और मुझे वो साइकिल से उतार थी। क्या बात है भाई, आज तो यादों के खजाना खोल दिया गया है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि उस समय कितना प्रेम था साइकिल से, घर से थोड़ी दूर भी जाना होता था या मम्मी छोटे से छोटा काम भी बोलती थी तो उछल कर करने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर आ गया स्कूटी, अरे नहीं, इससे पहले तो मैं

0: कार भी चलाना सीख ली थी, पर पापा जी चलाने नहीं देते थे। उन्हें लगता था कहीं मार दूंगी। फिर स्कूटी आया तो अब तक काम आ रही है, मतलब वो, और हालांकि शुरू से लेकर अब तक तीसरी स्कूटी है। जैसे जैसे नई तकनीकी आती जाएगी गाड़ी, तो मैं चेंज करती रहूँगी। वाकई आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि सालों साल तक वो याद रह जाती कि कैसे हमने अपने माता पिता को मना कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, और कितनी खुशी हुई थी जब हम पहली गाड़ी खरीदने गए थे। माता पिता को बैठक बाहर लेकर जाना, दोस्तों को घुमाना, बिठा कर मतलब ले जाना, घुमाना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना, और अपने अगर पसंद की गाड़ी मिल जाए तो, पसंद का कलर मिल जाए तो गाड़ी में और भी मज़ा आता है, इन्होंने कहा है। और पहले वाहन को चलाने में बहुत खुशी इन्हें महसूस हुई है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है। हम छोटे होते हैं तब स्कूल के लिए, जवानी में नौकरी के लिए, और बड़ी उम्र में मोटापा करने के लिए जिम वाले साइकिल चलाते हैं। क्या बात है भाई, सही बात है। और कई बार लोग जरा जरा सी कम जगहों, मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी बाइक उठा लेते हैं या कार उठा लेते हैं चल जाने के लिए। तो ऐसे जगहों पर आप साइकिल से जा सकते हैं, इससे आपकी कसरत भी हो जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मेरे घर में लाल रंग की छोटी साइकिल थी, उसको मैं खूब दौड़ाया करता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा पहला वाहन ठेलन गाड़ी थी जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
0: जी। और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था, तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी। उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी, और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते थे, और बाकी रुपये पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा भी पहला वाहन और आखिरी वाहन साइकिल ही था, और अभी तक है। परिवार इतना धनी नहीं था कि काठ का तिपहिया वाहन बनवाता, ये तो गनीमत रही कि शादी जल्दी हो गई और साइकिल मिल गई, जो बदलते हुए भी अब तक बना हुआ है। भाई शादी में आपने साइकिल अगर दहेज मिली है तब तो हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई ये जानकर, क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भले ही कितनी विपन्नता हो लेकिन जो दहेज में आप ले रहे हैं वो लोग कैसे कलेजा काट के चीजें इकट्ठे करके वो दहेज देते हैं। उन माता पिता से जरा पूछे उनका दर्द क्या होता है।
0: अपनी मेहनत से खुद खरीदें तो बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो चलिए सुनते हैं गीत।

0: भाई मंजरी जी, अगर कोई काम बड़े मनोयोग से किया जा रहा हो, बहुत तन मन धन से, और अचानक कोई आकर उसमें विघ्न डाल दे, तो क्या कहा जाता है? रंग में भंग डाल दिया है
1: जी,
0: ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम पिकनिक मनाने गए, लेकिन बारिश ने इस हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डाल दिया। अचानक बारिश शुरू हुई, इसका वाक्य प्रयोग हमारे किसी नाम लिखा, उनकी शादी में कुछ रिश्तेदारों की बातों के कारण रंग में भंग डाल दिया गया।
1: इसी तरह देखिए, हमारे साथी और भी लिखते हैं कि अचानक बारिश रंग जमाने के अलावा भंग भी डाल देती है। खेल रहे बच्चे अचानक झगड़ने लगने से रंग में भंग पड़ जाता है, और अचानक बिजली चली जाए और टीवी पर सीरियल देखते वक्त भी रंग में भंग पड़ जाता है। और कुछ साल पहले दूरदर्शन चालू प्रोग्राम के वक्त सिग्नल प्रॉब्लम होने पर प्रसारण रुक जाता था, तब भी रंग में भंग पड़ जाता था।
0: वो तो बहुत अलग किस्सा हुआ करता था, एक अलग ही अनुभव है कि लोग छत पर फिर जाते थे और उस सिग्नल को हिलाते थे, और फिर वहीं से चिल्लाकर एक बंदा पूछता था, आया, आ गया, स्क्रीन आया कि
1: जी
0: नहीं आया। फिर नीचे से कोई बताता था, नहीं नहीं नहीं अभी नहीं है। अच्छा, तो और हिलाते थे उसको,
1: जी
0: वो एक अलग ही, तो वो तो,
1: बिल्कुल।
0: और वो रंग में भंग जो पड़ता था ना, वो बड़ा करारा होता था,
1: देखिए,
0: बहुत ही
1: अभी तक
0: गहरा।
1: याद है वो रंग में
0: बिल्कुल।
1: भंग। और हमारे एक साथी और लिख रहे थे कि किसी हंसी खुशी के माहौल में अचानक बाधा डालना या मजाक किरकिरा हो जाना, ऐसे ही एक बार हमारे साथ हुआ सब। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया था, मुझे याद आ गया। तो
0: एक टिप्पणी है, ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, पर तिलक का दिन आया, लड़की वाले तिलक चढ़ाने आए, और तिलक जैसे ही ख़त्म हुआ, अभी लड़की वाले घर से निकले भी नहीं थे कि बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। फिर तो शादी भी रोकनी पड़ी, फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर में शादी करवानी पड़ी क्योंकि घर से नहीं हो सकती थी। चूंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो उन्हें साल भर वैसे छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए पंडित जी से पूछकर उनकी शादी मंदिर से हो गई, तो वहाँ पर वो रंग में भंग पड़ गया। हालांकि ये ऐसे नकारात्मक मौक़ों पर, दुखद मौक़ों पर इस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: रंग में भंग पड़ना एक सकारात्मक जब कार्य हो रहा होता तो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और एक लिखते हैं कि खुशी पूर्वक त्यौहार मनाया गया, मतलब जा रहा था, और बिना मतलब के बात के तनाव बढ़ गया और रंग में भंग पड़ गया। टेरेस पार्टी चल रही थी, अचानक बारिश आ जाने से रंग में भंग पड़ गया और सारे मेहमान अंदर भागने लग गए। और इसी तरह से एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने पढ़ लिया है ना। तो लिखते हैं कि रंग में भंग डालने का काम शादियों में बहुत देखने को मिलता है। जब सब काम चकाचक है, खाना लजीज है, तो सब नाच गा रहे हैं और कोने में फूफा जी मुंह फुलाकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया गया था, तो रंग
0: ये
1: में
0: रंग में भंग
1: भंग पड़
0: है।
1: गया।
0: और ये अक्सर होता है, हर शादी के माहौल में होता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में खुशियों के रंग भरने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी नकारात्मक सोच उन रंगों में भंग डाल सकती है। इसलिए दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और समझ बनाए रखें, क्योंकि रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें मिलावट नहीं बल्कि अपनापन हो। किसी की मुस्कान में भंग डालने की बजाय उसकी खुशी का हिस्सा बनना ही सच्ची इंसानियत है।
1: बिल्कुल। और देखिए, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गाने बज रहे हैं, और उसी में आंधी पानी आ जाए तो भी रंग में भंग पड़ ही जाता है एकदम। और ये कहते हैं कि रंग में भंग का दृश्य कुछ साल पहले देखने को मिला। लिखते हैं कि शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब का गीत बज रहा था, तभी ऐसी आंधी आई कि टेंट उड़ने लगा, शामियाने के खंभे उखड़ने लगे, लोग

0: घर में भागकर छिपने लगे। दूल्हे ने दुल्हन को कमर से कसकर पकड़ रखा था। जैसे तैसे मंच से उतरकर मकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए। फिर जोरदार बारिश भी आ गई, सब रंग में भंग पड़ गया।
1: तो भाई ये
0: जी
1: कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का प्रयोग आज भी जारी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं आपके पास, खोज के रखिए, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: देखिए, अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए लेते हैं। सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली

0: सिंह इज किंग, राउडी राठौर जैसी बहुत सारी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा आपने दिखाया है। वो हैं मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी, और उनके साथ हैं उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: शुक्रिया।
0: कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुखद लगता है। जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधार टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना, बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
0: क्या
1: बहुत अच्छा लगता है सीरियली।
0: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
2: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
0: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
2: जी,
0: आकाशवाणी जलगांव में?
2: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
0: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
2: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाला था।
0: जी जी।
2: तो उस वक्त बहुत मज़ा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
0: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताज़ा हो गई।
2: बिल्कुल।
0: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
1: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली। क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी ज़िंदगी में कभी ज़्यादा, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं। जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, किस कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया।
0: जी, और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या हैं, कौन हैं बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
1: शुरू हो चुका है ये
0: जी
1: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है।
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: आप वहाँ भी देख सकते हैं।
0: जी, आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहाँ चलते हैं पहले जहाँ यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले। वो NSD की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
2: जी, मैं गलती से जब
0: गलती से मिली यशपाल जी से
2: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे NSD के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात, तो वहां मैं रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से, और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेके चलता हूँ।
0: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल। फिर क्या हुआ?
2: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स साथ में ही थे फिर। फिर तो लड़ाई चलती रही।
0: अच्छा। पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा NSD की बातें कर ले। यशपाल जी, हमने सुना है कि NSD के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
1: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। NSD में

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, तो सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लगान, गंगाजल, अब तक 56, अपहरण, बवंडर

0: कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया तब नहीं हुआ, तो चौथी बार किया तब हुआ।
1: अच्छा,
0: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा।
1: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप दोनों को मिलाया।
0: 3 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में। तो वहां से फिर 1 साल किया एमए, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया। तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून कि उसमें हमने शुरू किया था। प्रतिभा भी थी हमारे क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय कुलकर्णी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे जो बहुत अच्छा बैच था हमारा
1: जी। तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
0: नहीं ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, उसको चल रहने देते हैं थोड़ा सा
1: जी।
0: हाँ लेकिन एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त।
1: जी जी जी।
0: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था।
1: अरे अच्छा।
0: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया कि अपने बाल कर्ली करवा लिए।
1: अच्छा।
0: कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो। तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया,
2: कुछ ना कुछ करवाते ही रहता था।
0: बता रहा था भाई 400 रुपए बहुत ज्यादा थे उस वक्त, 400 रुपए तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त। तो बोलो 400 रुपए में करवाए हैं बाल कर्ली। तो और जिस जो भी देखे रितु तलवार थे वो भी, अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपए में गंजा हो गया। मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात।
1: जी, तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
0: प्रतिभा जी,
2: पिया तो से नैना
1: लगे रे। वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे
1: बीच
0: रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो जो मैंने उठाया था,
0: जी
1: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
0: हाँ,
1: वहाँ,
0: चल
1: इस
0: के चल के जाया।
1: हॉस्टल से वहाँ तक। तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर, और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे, और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई, तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया, जलगांव,
0: अच्छा
1: दिल्ली से जलगांव, सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ए ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो,
0: अच्छा
1: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं।
0: ओ
1: बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे
0: अरे तो
1: वो आर्य
0: यशपाल के
1: समाज,
0: वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे। अच्छा
1: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
1: हुई शाम उनका

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे रेपेट्री
0: कौन सा काम
1: में।
0: था?
1: रेपेट्री में एज एन एक्टर
0: नाटकों
1: काम
0: की
1: करते थे,
0: रिहर्सल वगैरह।
1: नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती रही।
0: वो दोनों लोग उसमें
1: हाँ,
0: किरदार।
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में,
0: जी
1: मारिया।
0: जी यशपाल जी से हम जाना चाहते हैं। अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिना है? गंगाजल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
0: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फ़ोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था। तो हम दोनों उसी में रहते थे और वहाँ सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
0: जी,
2: स्ट्रगलर का अड्डा था
1: हब
2: वो,
1: था वो।
2: स्ट्रगलर सब लोग, स्ट्रगल सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
0: जी
2: तो वहाँ रहते थे हम। तो वहाँ हमारे पास पेजर था, पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं,
0: जी
2: मैंने कहा फ़ोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फ़ोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फ़ोन, तो वहाँ उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त।

0: मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था, क्रिश्चियन
1: अच्छा
0: लड़की का।
1: जी
0: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5-4 घंटे ऐसे घूम घूम के कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है। मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि
1: बिल्कुल
0: मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है।
1: और
0: मतलब
1: बहुत था
0: इसमें
1: जी
0: वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफ़ी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरी तो ऐसे ही, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा। और मैंने कहा थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे, और वहाँ ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सेलेक्टेड।
1: क्या बात है।
0: मैं
1: वाह।
0: स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन। उसी वक्त आमिर खान मद्रास में थे, एआर
1: जी
0: रहमान के पास म्यूज़िक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सेलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए। तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
1: जी
0: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़, 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है, और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो, मैंने कहा फिर 80 हज़ार में कर लूँगा। फिर सोचा चलो 40-50 हज़ार में कर लूँगा। अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20 हज़ार मिलेगा तो भी कर लूँगा मैंने
1: क्या
0: कहा।
1: बात है,
0: फिर
1: कितनी
0: मैं गया रीना दत्ता जी के ऑफिस में
1: प्यारी
0: गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहे हैं।
1: बात
0: तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, दो दो लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात
0: अब
1: है।
0: देखो ये होता है, और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था। फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50 हज़ार और एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था। तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए, और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई, हर जगह, बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया, मलेशिया, मॉरिशस, सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया। और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी,
1: जी बिल्कुल।
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का।
1: जी।

0: कैसे न चले। आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारीकर ने सबको।
0: जी
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था, और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से।
0: जी
1: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे, और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तुम वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट के लाते हो, लकड़हारा हो, और यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करते हो, और फिर गांव में एक एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो
0: जी
1: गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था, और यहाँ से वो सामने गौरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो, इसीलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो। और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं,
0: अच्छा क्या बात
1: गौरी
0: है?
1: को देखने के बहाने।
0: जी जी जी
1: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा, और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक ही इंसान से, वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई मैं क्या कर रहा हूँ अब इसके लिए, मैं देश को धोखा दे रहा हूँ, वो
0: जी
1: एक एहसास हुआ, और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया
0: जी
1: कुदरती, अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
0: क्या बात
1: जी
0: है,
1: जी
0: बहुत बहुत मुबारक पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर, वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे,
0: जी
1: ये
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूँ, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया,
0: बिल्कुल
1: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी, और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पर उसी हिसाब से किया।

0: क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन
1: जी
0: चुका
1: जी
0: है,
1: जी
0: जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी। तो बहुत बढ़िया टीम थी और आशुतोष गोवारिकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था।
1: जी और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं ही,
0: बिल्कुल, आमिर खान के
1: तो
0: साथ
1: हाँ।
0: उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या
1: जी
0: करना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर मुझे
0: लगान
1: याद।
0: का ही सुनवा दो,
1: हाँ वो
0: जी,
1: बहुत
0: कोई
1: इंस्पायरिंग है,
0: हमसे जीत न
1: कोई
0: पाए।
1: हमसे
0: ठीक है।
1: जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज
0: क्या
1: देखना उनको लगान रोज
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: वो नहीं
0: तो
1: देखनी, ये ही
0: बच्चे
1: देखनी।
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब अब बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे
0: क्या
1: उनके फेवरेट एक्टर है उनके पापा।
0: बात है बहुत
1: हाँ
0: बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है,
0: जी नाम बताएं तो।
1: सौम्या, सौम्या
0: जी
1: शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं,
2: अरे
0: हीरो
2: हाँ एक
0: हीरो हैं।
2: मिनट, सॉरी मैं बीच में
0: हाँ
2: डिस्टर्ब
0: हाँ
2: कर
0: नहीं
2: रहा
0: नहीं
2: हूँ। जब
0: बोलिए बोलिए।
2: लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो, धोती वोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी, कौन सी थी वो, बोली बाप रे एक ऐसा हीरो आ गया है जो उसने सबको फेल कर दिया है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई। हैं
1: ऋतिक
2: कौन
1: रोशन
2: सी
1: की
2: वाली फिल्म
1: पहली
0: थी,
1: फिल्म जो थी
2: कहो ना
0: वो
2: प्यार
0: कहो
2: है,
0: ना प्यार है।
2: हैं? तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या करूं लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई, और गदर भी सुपर

0: सुपर हिट हुई
1: जी, बिल्कुल।
0: दोनों।
1: प्रतिभा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल। तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही हैं। तो
2: जी
1: ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा
2: नहीं,
1: था?
2: हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करते
1: कर चुके
2: आए थे,
1: हैं।
2: तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी, तब मुझे राजन कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी। तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे,
0: पता नहीं मुझे,
2: रघुवीर यादव
0: रघुवीर यादव,
2: शायद,
0: सॉरी,
2: हाँ
0: यस सर,
2: रघुवीर यादव
1: जी।
2: उनके दिमाग में थे। पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे, वो क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहाँ से मुझे नोटिस किया था। और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
1: जी। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे,
2: नहीं,
1: लेकिन
2: तब
1: इसमें
2: हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहाँ पे लोकेशन था,
0: मनोर में थी
2: मनोर में
0: लोकेशन,
2: थी।
0: वहीं होटल ले रखा था हमने
1: जी।
0: सब लोगों ने,
1: अच्छा।
0: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहे थे, वहीं बाजू में ही गांव था, तो वहीं करते थे,
2: लेकिन
0: बच्चे भी साथ में थे।
2: बहुत सुंदर थी वो
1: जी,
2: फिल्म।
1: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे, और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी
2: तो उस
1: शूटिंग के
2: वक्त
1: लिए?
2: तो मतलब छोटे थे ही, ऑफ कोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल, और फिर मैं यहाँ से और क्या ही कर सकती हूँ, फोन ही कर
1: कि
2: सकते
1: बच्चे जब मिलते थे
2: हाँ
1: रोते थे तो फिर
2: नहीं,
1: दिल,
2: रोते भी थे, नहीं थे वो बड़े उस तरह के
1: अच्छा,
2: बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
1: उनको पता था कि
2: उनको
1: मम्मी
2: पता
1: पापा
2: था।
1: को आगे बढ़ना है
2: पर
1: ऐसे साथ में।
2: एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको, बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छमक छल्लो लग रही हो। ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला।
1: जी। तो बच्चे देखते रहते हैं तो, और बहुत कुछ सीखते हैं टेलीविजन
2: हाँ
1: से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
2: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।
3: लकड़ी

0: खुशी होती है, या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
1: जी,
0: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज़्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी
1: जी जी
0: किसी और
1: जी
0: शहर में कोई ऐसे बोल देता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो
1: जी
0: बढ़िया हो रहा है।
1: बिल्कुल। नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया, जिसमें मुकेश तिवारी भी है
0: अच्छा, वो बड़े न
1: वो?
0: खेले छोटे खेल,
1: जी,
0: हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है, डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है। और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो, तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया,
1: क्या
0: फिर
1: बात।
0: आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया। तो ऐसा उसका प्रोसेस था, और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ,
1: जी
0: मतलब एक दिन मैं करता था एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो।
1: जी
0: वो हुआ आइंस्टाइन हुआ या
1: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं। गंगा जल जो शुरुआती फिल्म है और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगा जल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
0: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूँ मैं तो तुम मेरे बारे में सुना किसी से, उन्होंने एनएसडी के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तुम उनके बेटे हो,
1: जी
0: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है करता हूँ, भी कर ली मैं, बात हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं, तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में, बोले हाँ यहीं पढ़ लो लो। तो मैंने वहाँ वह बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने,
1: जी
0: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी, मैं करूँगा। हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज़्यादा, और वो लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते मेरे सीन लिखे जाने लगे,
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: हाँ, और मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन तकरीबन क्या है एक्चुअली में।
1: जी
0: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया।
1: जी बिल्कुल।
0: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उस पर।
1: जी अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम।
0: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है।

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: तो जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था, सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
0: जी जी
1: डैनी साहब हैं जहाँ के, तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने, आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है, ये भी एक तरीका है बच्चों का।
0: जी जी
1: मेरी वाइफ भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती।
0: अच्छा
1: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
2: वो छोटे छोटे बच्चे थे मैं,
1: और वाकई में वो पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानी हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे राउडी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
0: जी जी
1: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
0: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
1: बहुत प्यारी फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मुझे, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे, तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पे पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये कुछ भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा।
0: जी, जी, जी। क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम
2: डोली में बिठाई के का।
0: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो भी

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को बहुत महत्व देता है। श्री यादव ने ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए 4 ज्ञान संकल्पों का अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए 4 नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावरे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा

0: खुद फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही फैसला है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा नहीं करना चाहिए। केरलम में विजयजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया, जो क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री बीडी सतीशन ने यूरोप के लिए पहले जहाज और 2 कंटेनर के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अनुपस्थिति, स्थायी रूप से स्थानांतरण, 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकरण और मृत्यु जैसे कारणों से 2,07,03,268 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अधूरे रह गए। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 40 रन बना लिए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थे थतार थुजार को हराया। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। भारत की प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 खिलाड़ियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ ₹1 में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और ₹2399 का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: श्रोताओं, अब पेश है फिल्म संगीत। रोजा फिल्म से गीत हम आपको सुनवा रहे हैं KS चित्रा और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, PK मिश्रा की रचना को संगीत से सवारा AR रहमान ने।

श्रोताओं, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत तेरे मेरे सपने फिल्म से तर्ज वीजू शाह की है। गीत को गाया हरिहरन और साधना सरगम ने।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अलका याग्निक का गाया ये गीत हमने चुना है राज फिल्म से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: श्रेया घोषाल का गाया गीत था जहर फिल्म से। श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: दोस्तों कल रिकॉर्डिंग होनी है प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन की, और प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। टॉपिक रहेगा कॉर्निया डोनेशन यानी नेत्रदान। नेत्रदान कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी, किसी शंका का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। कल बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एन आर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं

0: तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना
1: जी।
0: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
1: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है
0: जी।
1: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना
0: जी
1: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात।
0: हाँ बिल्कुल वही जंगल, JUNGLE
1: जी।
0: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेजन के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में
0: जी।
1: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
0: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है
1: जी। विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है
0: जी। बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
1: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया
0: जी।
1: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है
0: जी।
1: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
0: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र
1: जी। श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए
0: जी।
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है
0: जी।
1: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
0: इसका संबंध खान पान से है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
1: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: आशुतोष, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
1: पंडित बिरजू

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं

0: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
1: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था।
2: क्या बात,
3: क्या बात, पांवों में बिजली है।
2: वाह,
3: आओ भंगिमा तो देखो,
4: पांवों में ऐसी प्रतिभा,
3: अद्भुत प्रभावशाली,
2: अति सुंदर, अति सुंदर,
4: अति सुंदर, ये कभी नहीं देखा।
1: बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
5: सरिया के लते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे।
1: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
0: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
1: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
0: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
6: प्रणाम पिताजी।
7: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन
6: लेकिन क्या पिताजी?
7: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
6: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
7: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
6: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
7: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
6: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
7: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
6: जी पिताजी।
0: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
1: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
8: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और खासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
9: हमारे पर बाबा

0: अब शादी ठाकुर शादी उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग हैं, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था, तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
1: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
0: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊँगा पर मैं रियाज करूँगा, पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कह अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या है। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिरद कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, करें अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है, मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
1: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक ख़ास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
0: अरे उनको बड़े मज़े में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथ ही ताथ ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथ ही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं। तो
2: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
1: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया।

0: उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
1: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
2: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
3: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
2: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
4: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
5: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
1: भगत सिंह।
6: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
7: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
6: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
8: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
9: कौन है?
10: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
9: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
10: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
9: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
10: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
9: ये इस शीशी में क्या है?
10: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
9: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
10: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो।

0: ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
0: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
3: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
0: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
0: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
2: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।

0: ऐसा हुआ भी 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।
4: दोस्तों, कल रिकॉर्डिंग होनी है प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन की, और प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। टॉपिक रहेगा कॉर्निया डोनेशन, यानी नेत्रदान। नेत्रदान कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी, किसी शंका का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। कल बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है, ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 बजन वाले ने, हुण तो कुछ ही पलां च असीं आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों हिंदी विच समाचार लेकर आंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगा

0: लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,00,000 रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयनगरम से यूरोप के लिए पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराया। महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, वहीं मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुदेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: Hey Chandigarh, this is Sahaj Sabharwal, an author, influencer, motivational speaker, you tiger from Jammu and Kashmir and an aeronautical engineer. So, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके CV में भी कोई ऐसी जगह है या कहानी है, tradition या talent जो इंडिया को पता होना चाहिए? Then this is a chance for you all, Gems of India Challenge में आप 1 से 3 मिनट की अपनी वीडियो बनाएं और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने बताइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है। डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर टू, सो यू क्रिएट देन पोस्ट देन यू हैव टू स्प्रेड इट इन द होल इंडिया। थैंक यू।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
5: ये आकाश।

0: है।
1: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
0: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
1: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
0: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
1: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
0: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
1: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
0: ये आकाशवाणी है।
2: आकाशवाणी है।
3: दोस्तों, कल रिकॉर्डिंग होनी है प्रोग्राम FM लाइफलाइन की, और प्रोग्राम FM लाइफलाइन में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, PGI चंडीगढ़। टॉपिक रहेगा कॉर्निया डोनेशन, यानी नेत्रदान। नेत्रदान कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी, किसी शंका का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। कल बाद दोपहर 3:30 से लेकर 4 तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
4: ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक समाचार। पहला 6:10 ते हिंदी च साढ़े केंद्र तों, उस तों बाद शाम 6:20 ते पंजाबी च आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 26,161 बिजली ट्रांसफार्मर की खरीद को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते से हरियाणा के उद्योगों को बढ़ा लाभ होगा। और हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा, जल्द हरियाणा रोडवेज का मोबाइल ऐप जारी होगा और लगभग 700 कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
6: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
5: श्री रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा, अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
7: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार।

0: गांधी प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो जनगणमन हो इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए हुए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में प्रदेश की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 26,161 ट्रांसफार्मर की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में कार्यरत लाइनमैन व सहायक लाइनमैन की सुरक्षा के लिए 5,000 से 7,500 की संख्या में T&P किट की खरीद और 81 करोड़ रुपए की लागत से GIS बे के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जहां जरूरत हो वहां पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाए जाएं और इमरजेंसी के लिए भी सभी बिजली निगमों के पास पर्याप्त बैकअप मौजूद हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते CETA से देश के सभी राज्यों विशेषकर हरियाणा के उद्योगों को काफी लाभ मिलेगा। 15 जुलाई से लागू इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को UK के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हरियाणा के उद्योगों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों, निर्यातकों तथा सेवा क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि समझौते के तहत जिन प्रमुख क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है उनमें कपड़ा एवं परिधान, चमड़ा एवं जूता उद्योग, रत्न एवं आभूषण, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, दवा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प एवं सिरेमिक उत्पाद प्रमुख हैं। इस समझौते से पहले इन उत्पादों पर 4 से 70% तक शुल्क लगता था। अब इन क्षेत्रों के उत्पादों को UK में 0% शुल्क पहुंच मिलने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी जिससे सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था को देखते हुए इस समझौते के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए UK का बाजार महत्वपूर्ण अवसर बनकर उभरा है। UK ने इस समझौते के तहत लगभग सभी भारतीय कृषि निर्यातों के लिए शुल्क मुक्त बाजार उपलब्ध कराया है जबकि कुछ संवेदनशील उत्पादों को अपवाद के रूप में रखा गया है। इससे हरियाणा में फल सब्जियों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, मसालों, अनाज से जुड़े मूल्यवर्धित उत्पादों तथा अन्य कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी लाभ पहुंचने की संभावना है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगले 1 माह के भीतर हरियाणा रोडवेज का मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज में लगभग 700 कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे तथा राज्य में 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। श्री विज ने आज चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी दी। श्री विज ने बताया कि उन्होंने मोबाइल ऐप देखने के बाद इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक मॉड्यूल जोड़ने को कहा है ताकि ऐप में निर्धारित समय पर निर्धारित बस अड्डे या बस स्टॉप पर बस के पहुंचने की जानकारी, बसों के अनधिकृत स्थानों पर ठहराव की जानकारी तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। श्री विज ने कहा कि अधिकारियों को ऐप को हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों भाषाओं में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। श्री विज को बताया कि विभाग में करीब 700 कंडक्टर पदोन्नत किए जाने हैं और उनके स्थान पर जल्द ही 700 नए कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे। अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम के माध्यम से 125 साधारण बसें भी तैयार की जा रही हैं। UGC अधिनियम 2026 का स्वर्ण समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। पानीपत से शुरू हुई UGC रोल बैक पदयात्रा कल कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। विरोधियों का कहना है कि यह ऐसा कानून है जिससे समाज में आपसी भाईचारा खराब होगा। यह कानून सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में निवेश के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों

0: को आकर्षित करने के मकसद से 23 और 24 अगस्त को मुंबई में हैपनिंग हरियाणा रोड शो आयोजित किया जाएगा। इस रोड शो के जरिए निवेशकों को हरियाणा की औद्योगिक क्षमता, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेश को आसान बनाने के लिए दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि रोड शो का मुख्य मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में हरियाणा की भूमिका को दिखाना और राज्य को एक बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्र के तौर पर पेश करना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने हाल ही में अपनी औद्योगिक नीति में अहम बदलाव किए हैं और एक नई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME नीति भी लागू की है। इन नीतियों के तहत 2030 तक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम सेक्टर में 55 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करने और 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में 26,161 बिजली ट्रांसफार्मर की खरीद को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते से हरियाणा के उद्योगों को बड़ा लाभ होगा। और हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा, जल्द हरियाणा रोडवेज का मोबाइल ऐप जारी होगा और लगभग 700 कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। भारत की विलखण पछाण अथॉरिटी ने 2 करोड़ तो वध बच्चों के आधार बायोमैट्रिक्स को अपडेट करके एक वड्डी उपलब्धि हासिल की। हरियाणा पुलिस ने एक अंतरराजी बाल तस्करी नैटवर्क का पर्दाफाश करद्या मुख मुलजम प्रगट सिंह मुकुच्चर तो गिरफ्तार किया। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने किसानों मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बचाने लिए जैविक खेती अपनाने की अपील की। फौज की पैंथर डिवीजन वालों अमृतसर च आजादी दिवस की भावना को समर्पित महिला बाइक रैली का आयोजन। मौसम विभाग ने आते वीरवार तक पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ च कुछ थावां ते भारी मीह पैण की पेशीनगोई की। भारत की विलखण पछाण अथॉरिटी UIDAI ने बच्चों के आधार बायोमैट्रिक्स को अपडेट करने की अपनी मुहिम च एक वड्डी उपलब्धि हासिल की है। हुण तक देश भर में 2 करोड़ तो वध बच्चों के बायोमैट्रिक अपडेट किए जा चुके हैं। एक विशेष मुहिम पिछले साल सितंबर महीने च शुरू की गई सी। इस मुहिम के तहत 156,000 तो वध स्कूलों के बच्चों अपने आधार बायोमैट्रिक्स को अपडेट करने की सहूलत दी गई सी। 5 साल तो घट उम्र के बच्चों लिए आधार में सिर्फ नाम पता ते फोटो दर्ज की जाती है। 5 साल तक की उम्र के बच्चों लिए फिर 15 साल की उम्र के बच्चों लिए बायोमैट्रिक अपडेट लाजमी ने। बच्चों की सहूलत लिए 1 अक्टूबर 2025 तो 1 साल लिए 7 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों लिए बायोमैट्रिक अपडेट की फीस माफ कर दी गई है। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सिचीवाल वालों शुरू की गई मुहिम अपना पिंड संभालों में भरवा हुंगारा मिल रहा है। आज सुल्तानपुर लोधी के गौशाला पिंड फत्तेवाल मंड में पिंडां दे लोग शामिल हुए। इस दे नाल दूजा इकट्ठ पिंड सरूपवाल च कीता गया। पिंडां दे लोगों नूं आपो अपने पिंडां नूं संभालण लई अगे आउण दी अपील की गई। इस मौके संत बलबीर सिंह सिचीवाल ने संबोधन करदिआं कहा कि मंड इलाके के पिंडां नूं नशा मुक्त करना है। नशे च फसे नौजवानों लई मुड़ वसीबे लई उपराले कीते जाणगे। संत सिचीवाल ने कहा कि अपना पिंड संभालों मुहिम तहत पिंडां च नशा वेचण आउण वालिआं नूं रोकणा है ते पिंड विच टिकरी पैरे शुरू करने चाहीदे ने तां जो लुट्टां खोहां तों लोकां दा बचाव कीता जा सके। उन्हां मौके ते मौजूद DSP नूं वी हदायतां कीतीआं कि जदों लोक नशे दे सुधाकरां दी जानकारी दे उस नूं गुप्त रख्या जावे। इस तों बाद उन्हां आधुनिक बन्न दा दौरा कीता। इलाके दे किसानां नूं दस्सिआ कि इह बन्न बणाउण च सारे पिंडां ने सांझे उपराले कीते ने। राज्यसभा मैंबर वल्लों अज जलंधर जिले के पिंड महराज वाला च अपना पिंड संभालो मुहिम तहत इलाके के पिंडां दा इकट्ठ रख्या गया। हरियाणा पुलिस ने पंजाब स्थित परिवारक मैंबरां ते उन्हां दे साथियां दे एक अंतरराजी बाल तस्करी नैटवर्क का पर्दाफाश करदिआं इस दे मुख मुलजम प्रगट सिंह ने मुकुच्चर तो गिरफ्तार किया। पुलिस वालों हुण तक एकत्र की गई जानकारी मुताबक इस नैटवर्क ने पूरे भारत में 50 बच्चों को बेचे। इस कार्रवाई की अगुवाई करने वाले हरियाणा च बहादुरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस

0: प्रोग्राम अमृत बाणी च हुणे तुसी शब्द सरवण कर रहे सी। ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। श्रोतियो जयमाला प्रोग्राम लई बस थोड़ा जिहा इंतजार करो, ये प्रोग्राम असी विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को सलमा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शंकर महादेवन की आवाज में। गीतकार हैं प्रसन्न जोशी, संगीत है शंकर एहसान लॉय का, फिल्म का नाम है मणिकर्णिका।

फौजी साथियों, देवता इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: रुपहले पर्दे की एक अभिनेता।
1: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
0: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
1: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
1: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
0: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मासूम, इस फिल्म का गीत सुनिए अनूप घोषाल की आवाज में। नगमा निगार है गुलजार, तर्ज है राहुल देव बर्मन की।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
2: मैं यहां, यहां, यहां, यहां।
3: और अब खूबसूरत इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: खुशबू, इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है गुलजार ने, तर्ज है राहुल देव बर्मन की।

0: अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, किशोर कुमार और राकेश रोशन की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। नगमा निगार है गुलजार, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।

0: हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है AR रहमान का, फिल्म का नाम है दिल से ही।

अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में। संगीत था AR रहमान का, फिल्म का नाम था दिल से। फौजी साथियों, जय माला कार्यक्रम अब समाप्त होता है। जय हिंद।

0: श्रोतो हरमनजीत सिंह दे बोल सी धुन तैयार की सी एवी सरा ने गाय कलाकार सन एमी विक ते निमरत खैरा।
1: नमस्कार चंडीगढ़, मैं हूं ओजस्वी शर्मा, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर। अपने शहर चंडीगढ़ में बहुत सी जगहें, बहुत सी कहानियां, बहुत से ट्रेडिशंस और बहुत सारा टैलेंट है जो कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत को पता होना चाहिए। बस एक ही मौके की तलाश है और यही वो मौका है। दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। माई वेव्स OTT पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट एक्सप्लोर योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम। दिखा दो पूरे भारत को जो आपके अंदर छुपा हुआ जेम है। शूट इट, शेयर इट, शो इंडिया।
0: हुन आनंद माणो मिक्सिंग दे संगीत विक्की संधू दे लिखे गीत दा गायकी जैस्मिन सैंडलस दी।

0: आइए आइए मास्टर घसीटर, आ जी आइए।
1: नमस्कार।
0: अरे देवीलाल देख इधर आ, तेरे मास्टर जी आ गए।
2: मैं तैयार बैठा हूँ बापू।
0: जाइए मास्टर जी, देव कमरे में है, आप ही के इंतजार में। कितनी ललक है मेरे बेटे को अंग्रेजी पढ़ने की।
1: वाह वाह,
0: आपके आने से पहले ही तैयार होकर बैठ जाता है।
1: ये बड़ी अच्छी आदत है।
0: लेकिन मास्टर जी
1: जी,
0: इसकी ये अच्छी आदत पता नहीं उस वक्त कहाँ चली जाती है जब संस्कृत के मास्टर आते हैं, तब बदमाश खोजने से भी नहीं मिलता।
1: ये तो ठीक नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा।
0: ओहो, अब कौन है?
2: पोस्टमैन।
0: ला भाई, बस एक ही चिट्ठी है।
2: जी हाँ।
3: अजी दरवाजे की घंटी दो बार बोली थी। अजी मैं पूछती हूँ कौन कौन आया।
0: पहली घंटी में मास्टर जी आए जो देवू के कमरे में चले गए, और दूसरी घंटी में डाकिया एक चिट्ठी दे गया।
3: चिट्ठी?
0: हाँ।
3: अजी मेरे मायके से आई होगी, लाओ दो दो।
0: ये चिट्ठी तुम्हारे मायके से नहीं हो सकती क्योंकि ये लिफाफा है।
3: अच्छा।
0: और तुम्हारे घर से हमेशा पोस्ट कार्ड ही आते हैं।
3: इसका कारण पैसे की कंजूसी नहीं है जी, तुम्हारी तरह वो कपड़े के दलाल तो है नहीं, कपड़े के व्यापारी है। लगता है इस बार कोई खास बात है तभी लिफाफा भेजा है।
0: तो भी ये तुम्हारे घर की चिट्ठी नहीं हो सकती।
3: क्यों जी?
0: क्योंकि पता अंग्रेजी में लिखा है और तुम्हारे घर का कोई भी आदमी अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है।
3: तो इसमें ताना मारने की क्या बात है जी, तुम भी तो अंग्रेजी नहीं जानते। मेरा देबू पढ़ रहा है, वो सारी कसर पूरी कर देगा, फिर मेरा असली घर भी तो यही है।
0: ये बात तुमने लाख रुपए की कही।
3: तो लिफाफा दो, मैं खोलूंगी।
0: लिफाफा मेरा खोलना ही ठीक रहेगा? याद है पिछली बार तुमने लिफाफे के साथ चिट्ठी भी फाड़ डाली थी? इसे भी फाड़ने का इरादा है क्या? लो, सब गड़बड़ हो गया
3: है। क्या हुआ?
0: अरे सिर्फ पता ही नहीं, पूरी की पूरी चिट्ठी अंग्रेजी में है।
3: मास्टर जी घर में ही है, बुलवा कर पढ़ा लो।
0: है? पता नहीं किसने भेजी है, क्या लिखा है। देखो बिना जाने बूझे पराए आदमी से घर की चिट्ठी नहीं पढ़ानी चाहिए।
3: हाँ।
0: इतने दिन हो गए अपने देबू को अंग्रेजी पढ़ते हुए, क्या एक पत्र भी नहीं पढ़ सकता वो?
3: तो उसी से पढ़वा लीजिए।
0: बेटा देवीलाल, बेटा जरा यहाँ तो आना।
2: पढ़ने भी देंगे या नहीं बोलिए, क्या काम है?
0: बेटा देखो ये पत्र आया है, अंग्रेजी में लिखा है, तू पढ़ सकता है? कोशिश करके देख जरा।
2: लाइए। मैं पढ़ तो सकता हूँ बापू, मगर ये पत्र मुझे नहीं पढ़ना चाहिए।
0: क्यों?
2: मैं नहीं पढ़ूंगा।
0: मगर इसमें ऐसी क्या बात लिखी जो तुझे नहीं पढ़नी चाहिए?
2: अब आपको कैसे समझाऊं, किसी ने आपके लिए ये प्रेम पत्र भेजा है।
0: अबे जा, मुझे प्रेम पत्र कौन भेजेगा?
2: ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिरनामा साफ बताता है कि ये प्रेम पत्र है।
0: क्या लिखा है सिरनामे में?
2: माई डियर, फिर आपका नाम है, मतलब मेरे प्यारे चंपा लाल जी, ऐसा ही तो होता है प्रेम पत्र।
3: अच्छा जी, तो आप प्रेम पत्र भी आने लगे, तभी मास्टर जी से पढ़ाने में ही चक रहे थे।
0: तुम गलत शरत मत समझो जी।
3: हाँ, हाँ।
0: मैं कहता हूँ ये प्रेम पत्र कतई नहीं है। देबू पहले ये बता पत्र भेजा किसने है?
2: अभी बताता हूँ। GURDN गार्डन। हाँ, भेजने वाला है गार्डन।
0: क्या गार्डन? अबे बुद्धू, गार्डन माने तो बागीचा होता है, इतनी अंग्रेजी तो मैं भी जानता हूँ, बागीचा मुझे पत्र कैसे भेजेगा? लेकिन ठहर ठहर ठहर, मैं रोज सवेरे बागीचे में घूमने जाता हूँ ना, वहां और भी बहुत से लोग आते हैं, कुछ से मेरी दोस्ती भी हो गई है, लगता है उन्हीं में से किसी ने पत्र भेजा होगा और अपना नाम ना लिख के बागीचा लिख दिया है।
3: देबू जरा देख, बगीचे

0: के पहले क्या लिखा है, पत्र भेजने वाले ने अपना संबंध क्या बताया है।
1: योर फ्रेंड, हाँ माँ, लिखा है आपका मित्र।
0: बेटा देबू, जरा ठीक से देख ले, मित्र लिखा है या मित्रानी।
1: अम्मा, अंग्रेजी में मित्र और मित्रानी के लिए एक ही शब्द होता है, फ्रेंड। फ्रेंड माने मित्र या मित्रानी।
0: तो जरूर ये मित्रानी है, 7 दिन से सर्दी से ये बगीचे में नहीं गए, तो मित्रानी जी को हैरानी हुई होगी। बेचैनी में बेचारी ने अंग्रेजी में पत्र लिख मारा।
2: जो मुंह में आता है अनाप शनाप बकी चली जाती है, ये भी ख्याल नहीं करती कि पास में बेटा खड़ा है।
0: जब तुमने मित्रानी बनाते वक्त कुछ ख्याल नहीं किया, तब मैं चिट्ठी सुनते वक्त क्या ख्याल करूं। हाँ देबू, ये तो मालूम हो गया कि चिट्ठी बागीचे की किसी मित्रानी ने भेजी है। अब ये बता कि चिट्ठी में लिखा क्या है।
1: लिखा है, मुझे दुख है।
0: दुख तो होगा ही, 7 दिन से भेंट जो नहीं हुई।
1: अम्मा, तुम बीच में बोलोगी तो मैं भूल जाऊंगा।
0: अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगी, तू आगे पढ़।
1: आई कुड नॉट सेंड लेटर, हाँ मैं नहीं भेज सका पत्र।
0: भेज सका नहीं, भेज सकी, सकी बोल।
1: अच्छा, ये कौन सा शब्द है? E-A-R, ear, ear माने कान, फिर है L-I-A-R, हाँ लायर, लायर माने झूठा आदमी। अम्मा, वो लिखता है।
0: एक झापड़ मारूंगी देबू।
1: हाँ अम्मा, वो लिखती है कि मुझे दुख है, मैं पत्र, कान और झूठा आदमी नहीं भेज सकी।
2: वाह वाह वाह, क्या खूब, जैसा पत्र पढ़ने वाला वैसा सुनने वाला।
0: हाँ जी।
2: किस गधे ने कान और झूठा आदमी मंगाया था? सब गड़बड़ लगता है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया।
0: तुम समझ कर भी ना समझोगे तो कोई कैसे समझाए, मगर मैं सब समझ गई।
2: अच्छा, क्या समझा तुमने?
0: इसमें समझने को है ही क्या, बिल्कुल साफ तो है, वो तुम्हारी मित्रानी मेरे कान भरने के लिए किसी झूठे आदमी को पत्र के साथ मेरे पास भेजने वाली थी, लेकिन लगता है वो फरेबी आदमी पहले हामी भर के बाद में आने से मुकर गया होगा। तो लाचार होकर महारानी ने डाक से चिट्ठी भेज दी।
2: बलिहारी तुम्हारी समझ की, वो झूठा आदमी तुम्हारा कान क्या भरता?
0: इसे तुम नहीं समझोगे, औरत के मन की औरत ही समझ सकती है।
1: आगे लिखा है, मुझे आशा है तुम्हारा बेटा, TIVIL, अरे अरे डेविल माने तो राक्षस होता है।
0: चौंकने की कोई बात नहीं देबू, वो डायन मेरे बेटे को राक्षस न कहेगी तो क्या श्रवण कुमार कहेगी। तू आगे पढ़।
1: ALMUST, अलमस्त, BIBDDD, आगे कौन सा अक्षर है समझ में नहीं आता, एकदम घसीट दिया है लिखने वाले ने। बापू, मैं किताब की छपी हुई अंग्रेजी तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन घसीटी अंग्रेजी मैं नहीं पढ़ सकता।
2: मैंने मास्टर घसीटे लाल को खास तौर पर इसलिए रखा था कि वो घसीटी अंग्रेजी भी पढ़ा देंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें घसीटी अंग्रेजी नहीं सिखाई?
1: नहीं, अभी तक नहीं सिखाई।
2: अच्छा अच्छा, मैं उनसे पूछ लूंगा, तू कोशिश कर।
1: ING, तो वो अक्षर डाई हो सकता है, हो जाएगा डाइंग, आगे है विल। समझ गया अम्मा, वो लिखती है, मुझे आशा है कि तुम्हारा राक्षस और अलमस्त बेटा अच्छी तरह मर रहा होगा।
0: अजी सुना तुमने?
2: क्या?
0: वो मेरे बेटे की मौत मना रही है, अभी भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता?
2: मुझे गुस्सा नहीं, हंसी आ रही।
0: ठीक है हंसो हंसो, मगर उसके मनाने से क्या होता है जी। देबू, चिट्ठी खत्म हो गई या कुछ और भी है?
1: एक लाइन और है अम्मा,
0: उसे भी सुना दे।
1: आई विल कम सून, हाँ मैं जल्दी आऊंगी।
0: क्यों नहीं, उसके बाप का घर है ना।
1: रेस्ट इज ओ बना के बिंदी, फिर बी, फिर के बना के बिंदी, रेस्ट माने आराम, हाँ आराम है ओके। अम्मा, ये ओके क्या है, मैं नहीं जानता।
0: तू नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं जानती हूँ ना, ये ओके नहीं है देबू, आके है, मतलब मैं आके आराम करूंगी। अच्छी बात है, आने दे चुड़ैल को, ऐसा आराम कराऊंगी कि जिंदगी भर ना भूल पाएगी, वो भी क्या याद करेगी कि उसने सुनंदा के सुहाग पर फंदा डाला था।
2: देखो मैं इतना बड़ा झूठा कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: हाँ जी,
2: देबू ने जरूर पढ़ने में घोटाला किया है। मैं मास्टर जी को बुलाकर पत्र पढ़वाता हूँ।
0: जरूर पढ़वाइए, मगर ये मत भूलिए कि वो मास्टर हैं। हाँ, 10 जगह पढ़ाने जाते होंगे, आपकी नेक नामी का झंडा घर घर फहरा देंगे वो।
2: मुझे इसकी परवाह नहीं, जब मेरी किसी औरत से दोस्ती है ही नहीं तो डरूं क्यों।
0: हाँ जी,
2: आज को आज क्या। मास्टर जी जरा यहाँ आइए।
3: जी अभी आया।
2: मास्टर जरा ये अंग्रेजी की चिट्ठी तो पढ़ दीजिए।
3: हाँ लाइए लाइए।
2: सबसे पहले

0: ये बताइए कि पत्र भेजने वाला कौन है?
1: पत्र भेजने वाले हैं आपके कोई मित्र जो शायद रेलवे में गार्ड हैं, और उनके नाम का पहला अक्षर है न।
0: रेलवे गार्ड?
1: हाँ।
0: और नाम शुरू होता है न से?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: अरे हाँ, वही अपना लंगोटिया यार नटवरलाल भाई। मगर मास्टर जी, देबू तो कह रहा था पत्र किसी गार्डन यानी बागीचे ने भेजा।
1: देखिए ना, अगर गार्ड और एन को जरा जल्दी में मिलाकर बोलें तो वो गार्डन जैसा ही हो जाता है।
2: हाँ, मैं ऐसा ही तो बोला था। बापू बीच में बोल पड़े कि गार्डन माने बगीचा होता है। इतनी अंग्रेजी मैं भी जानता हूँ, तो मैं चुप हो गया।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मास्टर जी, आप चिट्ठी पढ़िए।
1: हाँ, गार्ड साहब लिखते हैं, प्रिय चंपालाल जी नमस्ते, मुझे दुख है कि मैं पत्र जल्दी नहीं भेज सका।
0: मगर देवू ने पढ़ा कि मैं पत्र कान और झूठा आदमी नहीं भेज सका।
1: जी
2: देखिए ना मास्टर जी, ये ई ए आर है, ईयर माने कान, और ये है लायर, लायर माने झूठ बोलने वाला।
1: ये दो शब्द नहीं है देवीलाल, एक शब्द है। शब्द है अर्लियर माने जल्दी, इसको तोड़कर तुमने दो बना दिया।
0: हाँ। आगे पढ़िए मास्टर जी।
1: हाँ, आगे वो लिखते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपका पुत्र देवीलाल बहुत अच्छी तरह होगा।
0: हाँ? तो पढ़ा था कि आपका राक्षस और अलमस्त बेटा अच्छी तरह से मर रहा होगा।
1: अरे वाह, ऐसा पढ़ा क्या देवीलाल ने?
2: मास्टर जी इसको देखिए ना, DEVIL, डेविल। डेविल माने राक्षसी तो होता है।
1: डेविल माने राक्षस जरूर होता है, मगर यहाँ भी तुमने आधे अक्षर ही लिए हैं, ए और एल को छोड़ दिया। उन दोनों को मिलाने से तुम्हारा नाम बनता है देवीलाल, उन्हें तुमने मिला दिया मस्त के साथ।
2: और डी के बाद ये घसीटा हुआ अक्षर मुझे वाई जैसा लगा, बाद में आई एन जी होने से डाइंग अर्थात मरने की बात हो गई।
1: नहीं भाई, ये वाई नहीं ओ है, हो गया डूइंग वेल।
0: अच्छा मास्टर जी।
1: हाँ।
0: एक बात तो बताइए, इतने दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए देबू को, लेकिन अभी तक इसे आपने घसीटी अंग्रेजी नहीं सिखाई।
1: जी
0: और तोड़ जोड़ बहुत सिखा दिया।
1: जी तोड़ जोड़ ये मेरा सिखाया हुआ नहीं है सेठ जी, और घसीटी अंग्रेजी सिखाने में मेरा ख्याल है कोई खास उसका तरीका नहीं है।
0: पत्र में कुछ और भी है, उसे भी सुना दीजिए।
1: हाँ जी, लिखा है मैं जल्दी आऊंगा, बाकी सब ठीक ठाक है।
2: रेस्ट माने आराम होता है ना?
1: भाई आराम होता है, और बाकी भी अंदाज से काम लेना चाहिए।
0: ए भगवान, पत्र में क्या लिखा और क्या पढ़ा समझा गया। अच्छा ये बताइए मास्टर जी,
1: जी
0: इतने दिन हो गए देबू को अंग्रेजी पढ़ते हुए, और मेरे हजारों रुपए खर्च हो गए, मगर ये एक पत्र तक नहीं पढ़ सकता।
1: देखिए सेठ जी, अंग्रेजी दूसरे देश की भाषा है, ये जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे ही आएगी।
0: तो मुझे ऐसी भाषा नहीं पढ़ानी जो कछुए की चाल से सीखी जाती हो।
3: हाँ, मैं भी देबू को वो भाषा नहीं पढ़ाना चाहती जिसमें मित्र और मित्राणी एक ही तरह लिखा जाता है।
0: आप कल से पढ़ाना बंद कर दीजिए। हाँ। जी
1: ठीक है, मैं कल से नहीं आऊंगा, मेरी फीस दे दीजिए।
0: हाँ, आपकी फीस कहाँ भागी जाती है, एक हफ्ते बाद आके ले जाइएगा।
1: देखिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा, आज ही दे देते तो अच्छा था।
0: आप कौन आया?
2: टेलीग्राम।
0: अरे तार आया है। मास्टर जी जाते जाते इसे भी पढ़िए।
1: जी जी लाइए। अरे वाह, बड़ी अच्छी खबर है, सुनकर आप तीनों बहुत खुश हो जाएंगे।
0: तो जल्दी सुनाइए ना।
1: देखिए आप सब खुश हो और मैं उदास मुंह लेकर जाऊं, ये तो अच्छा नहीं लगता। मेरी फीस दे दें तो मैं खबर सुनाऊं।
0: आप बड़े होशियार हो हैं। चलो देना तो है ही, एक हफ्ते बाद ही आज। ये लीजिए अपनी फीस और सुनाइए खुशखबर।
1: शुक्रिया शुक्रिया, सुनिए। अरे हाँ, तार भी उन्हीं गार्ड नटवरलाल जी का है। लिखते हैं, आज शाम की गाड़ी से सब परिवार पहुंच रहा हूँ, स्टेशन पर मिलिए।
0: मर गए।
1: सेठ जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
4: एक पत्र अंग्रेजी में। हवा महल में अभी आपने चंद्रशेखर पांडे की लिखी हुई ये झलकी सुनी, और प्रस्तुतकर्ता अनूप सेठी।
5: रुपहले पर्दे के एक अभिनेता।
6: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो।
5: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
6: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था,

0: जहाँ बिजली भी नहीं थी। सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
0: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल हम हैं आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए दलेर मेहंदी, चित्रा और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार हैं AR रहमान, फिल्म का नाम है रंग दे बसंती।

0: संती।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: मैं यहां, यहां, यहां, यहां।
4: लीजिए सुनिए विशाल ददलानी, सुखविंदर सिंह और रॉबर्ट बॉब ओमेलो की आवाजें। गीतकार है गुलजार, संगीत है विशाल भारद्वाज का, फिल्म का नाम है कमीने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।

0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत दलेर मेहंदी मास्टर सलीम और ऋचा शर्मा की आवाजों में। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीत है प्रीतम का, फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले।

आइए सुनते हैं अगला गीत सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है विशाल भारद्वाज का, फिल्म का नाम है ओमकारा।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं हरिहरन सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है गुलजार, संगीत है विशाल भारद्वाज का, फिल्म का नाम है

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोवा में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब से क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने

0: बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जाने गए हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोग को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडैरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुत प्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने

0: में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुस जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ते ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।
2: ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੀਲੀ ਧੜਕਨ।

तेरी नजर।

0: हो गई।
1: आइए सुनते हैं आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में वो गीत जिसे लिख

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है सलील चौधरी, फिल्म का नाम है माया।

0: रुपहले पर्दे की एक अभिनेता।
1: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
0: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार।
1: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
0: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
1: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
0: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।
3: अरे अरे अरे रुक।

साथियों, अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में वो नगमा जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है शंकर जय।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है श्री 420।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली। जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल में 16 अगस्त सन 1970 को हुआ था। मनीषा के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मनीषा कोइराला का परिवार नेपाल की राजनीति से जुड़ा रहा है। मनीषा के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा कोइराला है। इनके भाई सिद्धार्थ कोइराला बॉलीवुड में अभिनेता हैं। उन्हें अपने परिवार के संस्कार विरासत में मिले, इसलिए हमेशा उनकी नजर गरीबों और पीड़ितों पर रही। उनके लिए मदद करने का जज्बा मनीषा के भीतर हमेशा से रहा है।

मनीषा कोइराला लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में रही, जहां उन्होंने वसंत कन्या महाविद्यालय में 10वीं तक पढ़ाई की। जब उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी और फिर उनकी छुट्टियां शुरू हुई, तो इस दौरान उन्होंने शौक शौक में एक नेपाली फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था फिरी भेटौला। ये साल 1989 की बात है। मजेदार बात यह है कि तब तक मनीषा का फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। इस सपने को लेकर वो आ गई दिल्ली और उन्होंने धौलाकुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। जब तक मनीषा बनारस में थी, वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी, पर दिल्ली में अकेले रहने की वजह से वो काफी मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई। उनके भीतर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया।

दिल्ली में अजीब इत्तेफाक हुआ। यहाँ उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे और इस तरह अभिनय की लौ उनके भीतर जल उठी। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि उस शहर चले जो अभिनय का गढ़ है। वो चली आई समंदर के किनारे वाले शहर यानी माया नगरी मुंबई में।

0: मुंबई में अपने हिस्से का संघर्ष करने के बाद मनीषा कोइराला को आखिरकार एक बड़ा मौका तब मिला जब जाने माने निर्देशक शोमैन सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म सौदागर के लिए साइन किया। पूरे फिल्म उद्योग में सनसनी सी फैल गई कि नेपाल से आई एक नई अभिनेत्री सुभाष घई जैसे बड़े निर्देशक की निगहवारी में फिल्मों में काम कर रही है। इस फिल्म में काम करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि सुभाष घई अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेकर आ रहे थे। इतने विराट अभिनेताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती थी मनीषा के सामने।
1: तो

इसके बाद 1992 में आई फिल्म यलगार। इसके बाद आई फिल्म अनमोल और धनवान, जो कोई खास कमाल न कर सकी फिल्मी पर्दे पर। ऐसा लगा मानो मनीषा कोइराला समय की धुंध में खो जाएंगी। इसी बीच निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए चुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने रज्जू का किरदार निभाया। मनीषा कोइराला के सामने अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती थी। ये वो दौर था जब पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, मनीषा पूरी तरह से गैर अभिनेत्री हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मनीषा की प्रतिभा पर यकीन हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन भी मिला।

सन 1995 में मनीषा कोइराला ने मणिरत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया। उनके हीरो थे अरविंद स्वामी। इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को मिला फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड।

इसके बाद सन 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम, जिसमें उनके हीरो थे आमिर खान। एक बार फिर उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन।

सन 1996 में मनीषा कोइराला ने फिल्म मझधार में काम किया, जिसमें हीरो थे सलमान खान। सन 1996 में ही शंकर की फिल्म आई हिंदुस्तानी, जिसमें नजर आई मनीषा कोइराला। साल 1996 उनके लिए एक सुनहरा साल बन गया, जब आई संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म खामोशी द म्यूजिकल।

में मनीषा ने मूक बधिर माता पिता की एक संवेदनशील बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में हीरो थे सलमान खान। ये फिल्म मनीषा कोइराला के फिल्मी किताब में सुनहरे पन्नों की तरह दर्ज हो गई। वे टॉप लीडिंग हीरोइन बन गई।

0: फिल्म में उनके अभिनय की बड़ी सराहना हुई। अपने मूक बधिर माता पिता के साथ उन्होंने अपने आँखों से अभिनय किया। उनके चेहरे के जज्बात संवाद बोलते नजर आए।
1: ये

दिल से, जिसमें हीरो थे शाहरुख खान। ये फिल्म उनके अभिनय की ऊंचाई थी। उनकी बोलती आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की उदासी ने दर्शकों के दिल को छुआ। दिल के

जिसमें उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। सन 2001 में मनीषा कोइराला ने राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा में काम किया। इस फिल्म में रेखा, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जैसे दिग्गज सितारे थे।

0: साल 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी, साल 2003 में आई जयप्रकाश निर्देशित फिल्म मार्केट, साल 2005 अकबर खान की फिल्म आई ताजमहल, जिसमें मनीषा कोइराला ने जहां आरा का किरदार निभाया।
1: हर एक दिल यहां एक दिल तलाश करता है, वफा की, प्यार की मंजिल तलाश करता है। यहां परवाने शमा से करीब होते हैं, हसीन नजरों पे शहजादे शहीद होते हैं।

2000 में टीवी शो सवाल 10 करोड़ का, साल 2019 में फिल्म आई प्रस्थानम, साल 2023 में मनीषा कोइराला की फिल्म आई शहजादा।

नवंबर 2012 में मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर हो गया। इस बीमारी से वे हार नहीं मानी, उन्होंने बाकायदा इलाज करवाया और इस बीमारी से वे विजेता बनकर निकली।

0: सफर।
1: मनीषा कोइराला के अभिनय सफर को केवल उनकी खूबसूरती से जोड़कर देखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। मनीषा कोइराला का किरदार और उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए वे लगातार लड़ती रही हैं। वे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं। इन दिनों मनीषा कोइराला मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में भाषण देकर वे लोगों को प्रेरणा देती हैं। समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं वे।

2015 में नेपाल भूकंप में राहत और सहायता का भी काम उन्होंने किया। वे एक किताब की सहलेखिका भी हैं, जिसका नाम है हील द स्टोरी ऑफ हर बैटल अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर।

हाल ही में मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान की भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय से मल्लिका जान के किरदार को जीवंत कर दिया। इस वेब सीरीज की दर्शकों ने तो सराहना की ही, साथ ही साथ फिल्मी दुनिया के कई मशहूर सितारों ने भी मनीषा के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। मनीषा कोइराला की फिल्मी यात्रा आज भी जारी है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। उनकी पहली नजर ने दिखाया जादू, फूलों का शामियाना बनाने को दिल मचल उठा, आसमान में सैर करने के लिए उड़ चला दिल। हर मौसम में दिल को नजर आया बोगनबिलिया का रानी गुलाबी रंग, हर हर्फ मोहब्बत का लफ्ज बन गया। न जाने क्या हुआ दिल को कि वो एक जिद्दी बच्चा बन गया। जमीन से आसमान की सैर करने पर लगेगी चोट, ये भूल गया दिल। उनकी पहली नजर ने दिखाया जादू कि दिल ने कहा मानना छोड़ दिया।

ने जब बागों में गाया गीत, जब पहाड़ों पर गिरी बर्फ, जब सर्दी में ओस की बूंदें सुबह के सूरज की किरणों का साथ पाकर मुस्कुराईं, जब क्यारियों में नए अंकुर फूटे, जब खिला गुलाबी फूल, तब तब उसकी यादों की आमद हुई, तब तब उसके मुस्कुराते होठ गुनगुनाए मोहब्बत के नगमे, तब तब नदी के दो किनारे एक साथ चलने को आतुर हो उठे।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। उसकी मीठी मोहक बातों ने दिल पर कब्जा कर लिया, छोटा सा दिल, भला उसे क्या पता कि मोहब्बत की राहों में फूल संग कांटे भी होते हैं। मासूम दिल भला कांटों में उलझने से कहाँ डरता है। जादू भरी नजर ने ऐसे इशारे किए कि दिल चल पड़ा उस राह पर जहां से जुड़ती थी उसकी राहें। उसकी मोहब्बत की पुकार पर दिल को रोकना मुश्किल हो गया। उसका साथ जिंदगी का गीत बन गया।

भूलती नहीं वो आंखें जिनमें खुद के लिए प्यार का सागर था। उसने पलकें उठाई तो मोती झरे ऐसे समंदर की लहरों ने कई सीपियां एक साथ सौंप दी हों जैसे। उसकी पलकें झपकाने से नदी ने ठिठक कर देखा, झरने अपने रवाने में गुनगुना उठे। उससे मुलाकात क्या हुई, जीने का मकसद मिल गया।

ख्वाबों में तब्दील हसीन लम्हों को खोजता है दिल, शिकवे शिकायतों से लवरेज वो लम्हे गुम हो गए जिंदगी की जद्दोजहद में। वक्त उंगली छुड़ाकर दूर भागता रहा, हम वक्त का पीछा करते रहे, हसरतों की डोर पकड़कर दिल तेज रफ्तार गाड़ी की तरह भागता रहा, भागता रहा जिंदगी की राहों पर।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: ए आकाशवाणी है तो तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। पेश ने मुख प्रदेश खबरां। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विरोधी पार्टियां ते वोट बैंक की राजनीति लई विदेशी योगदान नियम सोध बिल बारे गलत जानकारी फैलाउण दा दोष लाया। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी दिवस समारोह दौरान कांग्रेस हैडक्वार्टर विखे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने लई कांग्रेस की आलोचना की।

0: ਸ਼੍ਰੋਤਿਓ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਸ਼ਮਤ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਵੱਲ।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਰੋਨੀ ਅਜਨਾਲੀ ਤੇ ਗਿਲ ਮਛਰਾਏ ਦੇ ਬੋਲ। ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹਸ਼ਮਤ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ।

0: दोस्तों कल रिकॉर्डिंग होनी है प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन की, और प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में इस बार हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर अमित गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। टॉपिक रहेगा कॉर्निया डोनेशन यानी नेत्रदान। नेत्रदान कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी अधिक जानकारी, किसी शंका का समाधान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। कल बाद दोपहर 3:30 से लेकर 4 तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
1: ਏ ਸੁਰਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और

0: ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

0: इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लालरिम सियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 11:05 होए ने हुण साडे केंद्र तों अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानू इजाजत दिओ। जय हिंद।